फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज दिन रविवार है। सक संवत 1948 के वैसाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

नित्य की ही भांति प्रातः का प्रथम वंदन स्मरण और नमन कर रही है भावना परिहार अपनी मातृभूमि माँ भारती माँ वसुंधरा का। उनके चरणों में नमन करते हुए करबद्ध हो प्रार्थना उनका यशगान करते हुए जिनके आंचल की छांव तले हमारा मन निर्भय और भय मुक्त रहता है उनकी मैं वंदना करती हूँ। प्राणों प्रिय माँ मातृभूमि के चरणों में समर्पित प्रातः की प्रथम वंदना उनके लिए जिन्होंने केवल मुझे नहीं वरन संपूर्ण सचराचर जगत को अपने आंचल की छांव तले छिपा रखा है अपने स्नेह की छाया सदैव सभी पर करती हैं उनके लिए मेरा करबद्ध प्रणाम स्वीकार हो।

मातृभूमि वंदन पश्चात अब वंदन वक्रतुंड महाकाय गौरी पुत्र श्री गणेश का। हे विघ्नहर्ता, हम आपका स्मरण कर रहे हैं हमारे सभी कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपका वंदन करते हैं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हमारा कल्याण कीजिएगा।

बुद्धि और चातुर्य में प्रथम देव गणेश जी के वंदन के पश्चात अब वंदन कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वाले सप्ताश्वर सहस्त्रांशु पाप नाशक श्री सूर्य देव का, उनके मंडल सहित हम उनका स्मरण करते हैं।

आपको अर्पण कर सकूं कहां इतनी मुझमें शक्ति है, आपका नाम पुकारूं प्यार से बस इतनी ही मेरी भक्ति है। हे शक्ति स्वरूप ईश्वर, आपको मेरा नमन स्वीकार हो, मेरी वंदना स्वीकार करें।

कृष्ण स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है, कृष्ण जीव, कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, कृष्ण ही पुरुषोत्तम मास के देव आराध्य हैं। तन की जाने हैं वो, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु के हाथ है हम सब की डोरी। क्या क्या कहूँ उनके लिए, वो हैं अनमोल, वो हैं पुरुषोत्तम।

वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

0: श्री रामचरितमानस गाना भी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं, आइए अब मिलकर करते हैं चिंतन।
1: मनुष्य जीवन को अनुशासित करने में धर्म की सदा एक असाधारण भूमिका रही है, इसलिए प्राचीन समाज में ज्ञान का हर रास्ता धर्म से होकर जाता रहा और धर्म के माध्यम से ही आचरण और व्यवहार की शुद्धता, मूल्य बोध और सामाजिक संरक्षण आदि की सभी बातें आवश्यक रूप से पढ़ाई और सिखाई जाती रही हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलः, वेदों को संपूर्ण धर्मों का मूल कहा गया और गीता का प्रारंभ भी धर्म शब्द से हुआ और उसमें धर्म विज्ञान का श्रेष्ठतम संदेश है। महाभारत पुराण के अनुसार धर्म का मूल समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण कामना है। इस प्रकार वैदिक युग से ही ये धारणा बन चुकी थी कि सुकर्म से स्वर्ग में सुख मिलता है और दुष्कर्म से दुख भोगना पड़ता है। स्मृतिकारों ने भी धर्म को सामाजिक व्यवस्था के मूल और मानव कर्तव्य के निर्णायक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारतीय मूल के समस्त धर्म वैदिक धर्म का आधार लेकर बढ़े हैं। सनातन धर्म का मूल स्रोत वेद ही है। सनातन धर्म में जब श्री राम और कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, तब उनकी आराधना का जो स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ वो वैष्णव धर्म कहलाया और वैष्णव मतायुनायियों ने भगवान विष्णु के संवेदनशील व्यक्तित्व के आधार पर प्राणी मात्र के प्रति करुणा अथवा दया भावना का प्रचार किया। वैष्णव धर्म में भक्त से यही अपेक्षा की जाती है कि वो प्राणियों में स्थित भगवान को अपने हृदय में देखकर उनसे तादात्म्य कर ले। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसलिए बाल कांड में लिखा, सी राम में जब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे सारे जगत को ही सीता राम मय जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित करते हैं। दार्शनिक चिंतन के अनुसार धर्म संस्थापनार्थ विष्णु जैसे राम और कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, वैसे ही पशु हिंसा को रोकने के लिए इस बार बुद्ध बनकर आए थे। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और मर्यादित करने और वर्ण जनित तिरस्कार और अपमान से समाज को बचाने के लिए कालांतर में गौतम बुद्ध ने भी जिस धर्म का प्रवर्तन किया वो योग की अपेक्षा के अनुरूप सर्वत्र अति के निषेध और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। और यही नहीं, अहिंसा परमो धर्म और पंच ककार के सिद्धांतों से जैन धर्म और सिख धर्म ने भी भारतीय धर्म को युगानुकूलता प्रदान कर व्यक्ति और समाज को सदा दिग्भ्रमित होने से बचाया है। धर्म वस्तुतः कर्तव्य बोध है जो देश काल और परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति और समाज ही नहीं राष्ट्र और विश्व का मार्गदर्शन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक का स्वर हो अथवा सभी दिशाओं से सद्विचारों को आने दें की आकांक्षा, सर्वोदय की भावना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन।
0: चिंतन अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रातः के 6:45 हुए हैं। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष आकर्षणों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय में यानी 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा और देशकान भी। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा होगा आज सुबह 7:20 पर। आज है रविवार तो आज सुबह 8:30 पर होगा बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा। जी हाँ, कार्यक्रम बाल सभा में आज क्रम सुनो और गुनो में बातें होंगी, चिट्ठी से मोबाइल तक का सफर इस विषय पर। साथ ही चर्चा होगी हृदय को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है।

कार्यक्रम जी हाँ कार्यक्रम बाल सभा में आज क्रम सुनो और गुनो में बातें होंगी चिट्ठी से मोबाइल तक का सफर इस विषय पर, साथ ही चर्चा होगी हृदय को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है इस विषय पर। इसके साथ ही होंगे अन्य आकर्षण, तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम बाल सभा सुबह 8:30 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का श्रोता आनंद ले सकेंगे आज सुबह 9 से, दिन में 11 से, दिन में ही 2:30 से और रात्रि 9 से व 9:30 से। आज सुबह 10 सुनिएगा जिले की चिट्ठी, जिसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर होगा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

संध्याकालीन सभा के आरंभ में सुनिएगा 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात होगी युवाओं में बढ़ता बीपी, कारण और समाधान। साथ ही होगा क्रम एक फनकार, जिसमें आज बातें होंगी माधुरी दीक्षित पर। जानिएगा आज का इतिहास, बताएंगे हम अगले क्रम के आकर्षण और आत्मसात कीजिएगा एक ज्ञानमयी अमृतवाणी को भी। इतना सब कुछ होगा जी हाँ कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर। गैर फिल्मी गजलों का श्रोता आनंद ले सकेंगे आज शाम 6 बजे से, और 6:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों को कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आज शाम 7:20 पर भोपाल से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनिएगा, और रात्रि 8 बजे से व 8:30 से सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। रात 8:15 पर होगा समन्वित प्रायोजित कार्यक्रम डगर विकास की, जिसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

और कार्यक्रमों की इन्हीं संक्षिप्त जानकारियों के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 6:50 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे छिंदवाड़ा से जुड़ी हलचलों का कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा।

कार्यालय छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हम कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा लेकर। और प्राप्त जानकारियों के अनुसार किसानों को जागरूक करने जिला मुख्यालय से कृषि रथ रवाना। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर कृषि रथों को रवाना किया। कृषि रथ गांव गांव पहुंचकर कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को देंगे तकनीकी जानकारी। ई विकास प्रणाली से ई टोकन बुक कराने और संतुलित उर्वरक के उपयोग की सलाह दी जाएगी। छिंदवाड़ा सांसद श्री विवेक बंटी साहू और साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा जिले के प्रत्येक विकास खंड में आज से प्रारंभ किए जाने वाले कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर कार्यालय परिसर से रवाना किया गया है। शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में कृषि एवं संबद्ध विषयों जैसे कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन आदि पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संपर्क कायम कर नवीन और वैज्ञानिकी तकनीकी सुधार की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व प्रत्येक विकास खंड में आज से 10 दिवसीय कृषि रथ चलाए जा रहे हैं। ये कृषि रथ कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण जी द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार प्रत्येक विकास खंड में ग्राम पंचायत सेवा सहकारी समितियों में भ्रमण करेगा, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, राजस्व विभाग के पटवारी उपस्थित होकर किसानों को तकनीकी जानकारी, विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक विकास खंड में एक कृषि रथ 10 दिनों तक रोज 3 से 4 ग्राम पंचायतों और सेवा सहकारी समितियों तक पहुंचेगा। तो हमारा निवेदन है कि जो हमारे कृषक भाई हैं वो इसका लाभ अवश्य उठाएं। अग्रिम प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर द्वारा छिंदवाड़ा जिले का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। व्यावसायिक शिक्षा, समर कैंप, बोर्ड परीक्षा और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई।

अग्रिम प्राप्त जानकारी के अनुसार दमुआ क्षेत्र में रेत परिवहन करते डंपर पर खनिज विभाग की कार्रवाई की गई। इसके अलावा एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का चौथा दिन रहा विशेष। कैडेट्स को मिला सैन्य और सामाजिक प्रशिक्षण, जिसमें प्राणायाम, योग अभ्यास, यातायात नियमों और जल संरक्षण की जानकारी भी दी गई।

विकास खंड जुन्नार देव में कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। जी हां, वर्ष 2026 कृषि कल्याण वर्ष के अनुरूप किसानों को दी जाएगी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी कृषि रथ के माध्यम से।

अग्रिम प्राप्त जानकारी के अनुसार जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 18 से 25 मई तक चलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यालय के निर्देश अनुसार जिले और तहसील स्तर पर 25 मई 2026 तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों और पीएम जनमन और डीए जिगवा से संबंधित ग्रामों में आयोजित होगा। इस अभियान के दौरान प्रतिदिन ग्राम स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 18 से 25 मई तक चयनित ग्रामों में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ग्राम भ्रमण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से हितग्राहियों को अवगत कराया जाएगा।

अग्रिम प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में निरंतर सशक्त हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी का। नवजात और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने की है उल्लेखनीय प्रगति। नवजात शिशुओं की डिस्चार्ज दर 82.3% पर पहुंची, साथ ही आईसीयू केयर यूनिट में बेड क्षमता 1770 हुई। अग्रिम प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया गया है 15 दिवसीय विशेष अभियान और 2,87,00,000 रुपए से अधिक की शमन शुल्क राशि वसूल की गई है। आगे भी जारी रहेगा यह सड़क सुरक्षा अभियान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा

0: क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे महत्वपूर्ण कुछ संदेश।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

Akashwadi at 90. सत्तर वर्षों का विश्वास छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है। सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने खजरी रोड छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:10 होने को हैं। श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक।

0: KR। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्य योजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: आज नवाचार और तकनीक का जमाना है, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकास खंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छैगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमरेरी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवां में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारा सिवनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजाति समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्ति शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 7:20 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे सदाबहार नगमों की गीत गंगा। आरंभ में सुनिए मुकेश की आवाज़ में भरत व्यास की रचना को। जी हाँ, संगीत है सतीश भाटिया का।

मुकेश की आवाज़ को अभी श्रोता सुन रहे थे भरत व्यास की रचना पर। जी हाँ, संगीत था सतीश भाटिया का और फिल्म थी बूंद जो बन गई मोती। आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से अभी श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम गीत गंगा के अंतर्गत। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए, गर्मी में सुनिए फिल्म बारिश का ये गीत। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और धुन बनाई है सी रामचंद्र ने, आवाज़ है चितलकर की।

0: जी हाँ, चितलकर की आवाज़ में ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, गर्मी में बारिश फिल्म का। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए बोल थे और धुन बनाई थी सी रामचंद्र ने। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल पश्चात जोड़ते हैं श्रोताओं आप सभी को कार्यक्रम गीत गंगा से, और श्रोता भी आनंद ले रहे हैं सदाबहार नगमों का आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मीगा हर्ट्ज पर। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। मजरूह के लिखे हुए बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी की बनाई हुई धुन फिल्म दोस्ती में।

0: रिकॉर्डिंग का। जी हाँ, साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग का समय होगा सुबह 9:05 से। तो जरूर करिएगा कॉल हमें अपने पसंदीदा गीतों को सुनने के लिए। बहरहाल ये गीत था फिल्म दोस्ती से। मजरूह की रचना थी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: ये कहानी है एक उसके की।
0: जोड़ते हैं श्रोताओं आप सभी को कार्यक्रम गीत गंगा से। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए आशा जी की आवाज़ में हसरत जयपुरी की रचना को। लयबद्ध किया है रामलाल ने फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। जी हाँ, इस फिल्म में

0: गीत गाया पत्थरों ने। जी हाँ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा जी की आवाज में ये गीत। हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल थे और रामलाल का था संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: सत्तर वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने खजरी रोड छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए सावन को आने दो। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत, जिसमें संगीत है राज कमल का और गीत के बोल लिखे हैं मदन भारती ने, आवाज़ है जसपाल सिंह व साथियों की।

प्रकाश भाई एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी छिंदवाड़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंगा। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए बोलों को। सी रामचंद्र का है संगीत फिल्म अमरदीप में।

बावरा पंछी डोल रहा था फिल्म अमरदीप से। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए बोल थे और तर्ज बनाई थी सी रामचंद्र ने, आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। लीजिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में एक बार फिर सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह के लिखे हुए बोल। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का है संगीत फिल्म पत्थर के सनम इस फिल्म में।

0: और श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गई इसी प्रस्तुति के साथ संपन्न होती है आज की गीत गंगा। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके इंतज़ार में अब है समाचार प्रभात। जी हाँ, सुबह के 8 बजने को हैं, सुनिएगा दिल्ली से समाचार प्रभात। करें बस क्षणिक इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर

0: गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के

0: सफारी की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है।

0: अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा कार्यक्रम का, जिसमें आपको नए नए रोचक विषयों से अवगत कराया जाता है, है ना? सही कहा ना दीदी ने? तो बच्चों, इसी श्रृंखला में इस रविवार आपके लिए सुनो और गुनो क्रम में लाए हैं चिट्ठी से मोबाइल तक का सफ़र, और साथ ही आपसे चर्चा करेंगे हृदय को स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है। और बच्चों, क्या है, हाँ, आपके पसंदीदा गीत जो आपको और आनंद और खुशी के साथ ओतप्रोत कर देंगे, और फिर आपको आपके दिमाग को तेज करने के लिए आपसे पूछेंगे एक रोचक पहेली। तो बच्चों, आज की पहेली क्या है उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, और सर्वप्रथम इस क्रम को हम आज की पहेली से शुरू करते हैं। क्या है आज की रोचक पहेली, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है, है ना बच्चों? बच्चों, आपको बस ये बूझना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है। तो क्या है आज की इस पहेली का उत्तर, आप जब तक खोजें, आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

प्यारे बच्चों, सुबह की खूबसूरत लालिमा में आप सभी का स्वागत करती हैं आपकी अपनी अंजलि दीदी आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। बच्चों, मुझे मालूम है आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना?

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: दो दो कोचिंग बदल ली, लाखों खर्च कर दिए, फिर भी नीट क्लियर नहीं हुआ।
1: अरे समर्पण इंस्टीट्यूट गया क्या?
0: नहीं, वहाँ क्या खास है?
1: ये परासिया नाके पर है, जहाँ है अनुभवी शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं और ड्रॉपर्स पर खास ध्यान। पढ़ाई इतनी आसान कि समझ खुद आने लगे।
0: तभी पूरे शहर में नीट सक्सेस के लिए समर्पण इंस्टीट्यूट की चर्चा है।
1: हाँ, जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। क्लासेस प्रारंभ समर्पण इंस्टीट्यूट, परासिया नाका, VIP नाका, छिंदवाड़ा।
0: बिल्कुल।
2: और बच्चों, इस गीत के बाद आप शुरू करते हैं आज का क्रम सुनो और गुनो, जिसका विषय है चिट्ठी से मोबाइल तक का सफर। तो बच्चों, बात बहुत सही है, इस सफर में कई पीढ़ियां लग गई हैं, है ना, जब जाकर हमें यह आधुनिक व डिजिटल युग मिला है, है ना बच्चों? सही कहा ना दीदी ने? तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी टाइम मशीन में सवार हो जाएं, ताकि आपको भी पता चल पाए कि चिट्ठी वाला युग कैसा था। बच्चों, आज हम एक बटन दबाकर दुनिया में किसी भी व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि पहले के लोग कैसे संपर्क करते थे? और अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? दूसरों तक पहुंचाने के लिए बच्चों, यदि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम पहले के समय में या तो कबूतर के माध्यम से संदेश दिया करते थे, या एक दूध बेचकर संदेश दिया करते थे।

और हाथों में से कागज पर अपनी बात लिखकर, अपनी भावनाएं या समाचार लिखकर उस पते पर डाकघरों में भेजा जाता था। कुछ कुछ दूरी पर लाल कलर के गोल लंबे लंबे बॉक्स लगे होते थे। ये उन बॉक्स में डाले जाते थे जो अंतर्देशी जिनको बोला जाता है, पोस्ट कार्ड जिनको बोला जाता है, इन पर अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती थी और फिर इसे इस लाल कलर के डिब्बे में डाल दिया जाता था। डाकिया आकर उन सभी पत्रों को इकट्ठा करके सही सही पते पर भेजता था। बच्चों, आपने बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा ना, जब यह गाना आता है, संदेशे आते हैं, है ना, सारे नौजवान के घर से उनके लिए पत्र आते थे और वह अब सभी इतने खुश होते थे और अपने अपने पत्र पढ़कर दो लाइन पढ़ते फिर खुश होते थे, फिर उनकी अपने परिवारजनों की याद करते थे, है ना बच्चों। क्योंकि बच्चों इस प्रक्रिया में कई दिन या कई महीने लग जाते थे। बच्चों उस समय चिट्ठियों का लोगों के जीवन में बहुत महत्व था। जब किसी परिवार के घर में चिट्ठी आती थी तो पूरा परिवार खुशी से उसे पढ़ता था, क्योंकि बच्चों चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं होते थे बल्कि उनमें प्यार, अपनापन और भावनाएं छुपी रहती थी। फिर बच्चों इसके बाद विज्ञान की ने गति ली और टेलीफोन का आविष्कार हुआ। अब लोग एक दूसरे से बैठे व्यक्तियों से घर बैठे बात कर सकते हैं, है ना, और इसके लिए लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा थी। लेकिन उस समय बच्चों फ़ोन हर घर में नहीं होते थे और लोग पीसीओ में, टेलीफोन बूथ में जाकर बात करते थे। फिर आया मोबाइल फ़ोन, तो बच्चों जिसने संचार की दुनिया पर पूरी तरह बदल दिया। और शुरुआत में मोबाइल केवल बात करने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन आज स्मार्टफोन हमारी जेब में इस एक छोटे से कंप्यूटर की तरह हो गया है। क्योंकि अब हम मोबाइल से कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं, इंटरनेट से नई नई जानकारियाँ निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कोरोना काल का है ना। वहाँ उस समय में जब हमने मोबाइल का भरपूर उपयोग किया और अपना काम, पढ़ाई, किसी चीज़ को भी रुकने नहीं दिया। इसीलिए बच्चों हमें मोबाइल का उपयोग बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए, ताकि तकनीक हमारे लिए सहायक बने, हमारा मालिक नहीं, है ना बच्चों। बच्चों चिट्ठी से मोबाइल तक का सफ़र केवल साधनों का बदलाव नहीं बल्कि यह विज्ञान और मानव विकास की कहानी है। इस सफर ने दुनिया को तेज, आधुनिक और एक दूसरे के करीब बना दिया है। बच्चों अंत में इतना ही कहूँगी कि तकनीक का सही उपयोग करें, समय का सम्मान करें और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। यही है आज के सुनो और गुनो का ज्ञान। तो बच्चों इस क्रम को देते हैं हम यहीं विराम और सुनते हैं अगला गीत,

0: झुमका नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा पास से बैठा पानी ताप। अगरबत्ती का

0: देखो घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, पी आई पी अटलवेर बनियान, पी आई पी अनवागान।
1: कहाँ है तेरी धुआं उड़ाती बाइक?
2: रिटायर्ड कर दी। ये ब्रांडेड साइकिल लक्ष्मी साइकिल स्टोर से खरीदी है, कलरफुल स्टाइलिश और दमदार ढेरों साइकिल है वहाँ। बी स्मार्ट, बी ग्रीन, राइड सेफ।
1: ए, तुझे इको बॉय बनने का सडन शॉक कैसे लगा?
2: पेट्रोल और पोल्यूशन से, अब नो पेट्रोल नो पोल्यूशन नो टेंशन, साथ में फिटनेस और सेविंग भी।
1: मैं भी कॉलेज के लिए साइकिल लाऊंगी।
2: लक्ष्मी साइकिल स्टोर, नागपुर रोड, बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा।
3: तो बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद अब आइए चलते हैं क्रम चर्चा की ओर। चर्चा का विषय है हृदय को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। तो बच्चों, बात बहुत पते की है और समझने वाली भी है। जब हमारा हृदय स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, है ना बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की जानकारी के अनुसार हृदय का स्वस्थ रहना जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हृदय शरीर का केंद्र इंजन होता है, है ना बच्चों? एक स्वस्थ हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। और बच्चों, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा और ऑक्सीजन और रक्त की जो प्रवाह है तभी मिलेगा जब हमारे लंग्स यानी फेफड़े सुचारू रूप से कार्य करेंगे। हृदय स्वस्थ रहने पर हमें अटैक आने की समस्या कम रहती है, है ना? शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है, बेहतर जीवन शैली होती है। स्वस्थ हृदय का मतलब है अधिक ऊर्जा, बेहतर मानसिक सतर्कता और कम तनाव होता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई हृदय स्वस्थ रहने की। इसे स्वस्थ रखने के लिए एक्सपर्ट क्या उपाय बताते हैं? तो बच्चों, सबसे अच्छी बात है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है और अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो हमें संतुलित आहार करना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और वसा और वा प्रोटीन युक्त, कम वसा और प्रोटीन युक्त अनाज खाएं, है ना? और नियमित व्यायाम

करें, है ना, नशे युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, तनाव कम करें, अपनी श्वास क्रिया को का अभ्यास करें, नियमित समय पर अपने नज़दीक के डॉक्टर पर सलाह के साथ में शारीरिक जांच कराएं, है ना बच्चों। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं बच्चों कि उम्र जो बीमारी है किसी भी उम्र को ग्रसित कर देती है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। अटैक आना बहुत ही एक आम बात हो गई है, इसीलिए बच्चों हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। तो बच्चों इन उपायों के साथ हम हृदय को स्वस्थ रखकर एक लंबा और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। तो बच्चों इस चर्चा के साथ अब अगले गीत की बारी आती है, तो चलिए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत। और बच्चों गीत सुने उसके पहले आज की चर्चा को आप ध्यान में रखें और अपना जीवन जो है सुखद और खुशनुमा बनाएं। तो आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

और इस आनंददायक गीत के बाद बच्चों, अब आज की जो पहेली थी, यदि जिन बच्चों ने नहीं लिखी हो तो वो एक बार फिर से ध्यान से सुन लें या कागज पेन से अपने पेपर पर नोट कर लें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है? तो बच्चों, इस पहेली का क्या उत्तर है, आप हमें SMS के माध्यम से या पत्र उत्तर के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और आपको आज का बाल सभा कार्यक्रम कैसा लगा यह भी हमें लिख भेजें, ताकि आपके पत्र जो हैं हम अपने प्रोग्राम में सम्मिलित कर सकें। और बच्चों, आइए अब जानते हैं कि हमारे अगले रविवार के क्या आकर्षण हैं। तो बच्चों, अगले रविवार सुनो और गुनो क्रम में दुनिया के अलग अलग देशों की दोस्ती के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और चर्चा के साथ पहाड़ी का अनोखा जानवर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, इस क्रम को हम यहीं विराम देते हैं, और मेरे साथ मिलकर अपनी अंजलि दीदी को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।

बाल सभा नन्हे मुन्नु के लिए ये कार्यक्रम अभी प्रसारित कर रहे थे हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं सुनिएगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। करें बस क्षणिक इंतजार।

कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कैदरी के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का, फिल्म है लूडो।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बात।

0: तो का गुलदस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज, बोल हैं गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार खां फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बेहतर हो।
1: ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है। इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर। प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
2: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख है मयंक भार्गव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बैतूल जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत 2,802 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से सोमवार की शाम तक 2,400 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सिंक किया जा चुका है। जिले के सभी 21 चार्जों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साह के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा मकान सूचीकरण और ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर ही पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट लेआउट मैप तैयार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में बैतूल जिले में इस बार कुल 4,56,050 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरीफ की फसलों का रकबा तय किया गया है, जिसके विपरीत पिछले साल 4,55,510 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। इस साल कुछ फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि कुछ फसलों के रकबे में कमी आई है। बैतूल जिले के किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक डॉक्टर आनंद बडोनिया ने बताया कि इस बार धान को 44,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। पिछले साल ये 43,872 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं मक्का 3,01,500 हेक्टेयर में बोई जाएगी, जो कि पिछले साल 3,93,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं कोदो कुटकी का रकबा इस बार 1,000 हेक्टेयर रहेगा। बीते साल इसका रकबा 639 हेक्टेयर था। उड़द, मूंग और अरहर का रकबा भी इस साल बढ़ेगा। बीते साल इन दलहनी फसलों का रकबा 6,971 हेक्टेयर था, जबकि इस बार 7,750 हेक्टेयर में ये फसलें बोई जाएंगी। वहीं तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इस साल बैतूल जिले के 1,718 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। न्यूजीलैंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदा पहुंचकर नांदा हानि कलेक्शन एवं प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने शहद उत्पादन से जुड़े स्थानीय समूहों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में हनी कलेक्शन सेंटर स्थापित होने के बाद शहद के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले शहद का मूल्य लगभग 55 रुपए प्रति किलो था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बैतूल जिले में इस साल गेहूं खरीदी की रफ्तार पूरी तेजी पकड़ चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी

0: के टेकाम ने जानकारी दी है कि अभी तक जिले में 40,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। अभी भी हजारों किसान अपने गेहूं की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल की खरीदी का आंकड़ा देखकर जिले को इस साल गेहूं खरीदी के लिए कम लक्ष्य दिया गया था। वहीं इधर बम्पर उत्पादन को देखते हुए जिले से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 मीट्रिक टन किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्षीरधारा ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 37 गांवों का चयन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि पेयजल समस्या से प्रभावित गांवों में बोरिंग मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार इस मौके पर व्यक्त किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं धीरेंद्र दुबे जी।

0: बहुत बहुत स्वागत है अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने इस मन पसंद कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम फिर हाजिर हैं आपकी बातें लेकर और आपके पसंद किए हुए गीतों को लेकर। आज फिर आपके साथ है आपका दोस्त धीरेंद्र दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। ये है पहला टेलीफोन कॉल। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सतारा से
0: कराड़ सतारा से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दूर से आपने फोन लगाया, बहुत खुशी हो रही है इतनी दूर से आपने फोन लगाया। पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सतारा से सुखाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: सुखाराम जाधव जी, क्या करते हैं सुखाराम जाधव जी?
1: सर जी, हमारा वर्कशॉप है, वेल्डिंग का। वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल सीढ़ियां बनाते हैं।
0: अच्छा, वेल्डिंग का काम है, ग्रिल दरवाजे और खिड़की बनाते हैं। तो बढ़िया डिजाइन की खिड़कियां बनाते होंगे सुखराम जी आप?
1: जी जी जी, बनाते हैं।
0: तो कैसा क्या करते हैं बताइए, इसके बारे में कुछ बताइए हमको।
1: नई नई डिजाइन आते हैं, लोगों को ये पसंद पड़ती है, फूल वाली, फूल पत्ती वाली।
0: अच्छा, तो फूल पत्ती तो घर में रहती है लेकिन आप अपनी वेल्डिंग के माध्यम से, अपने ग्रिल के माध्यम से फूलों से सजा देते हैं लोगों के घरों को, है ना?
1: जी जी जी, बिल्कुल।
0: बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और आसपास आपकी खेती भी तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा मूंगफली होती है आपके क्षेत्र में, गन्ना होता है ना। तो जाधव जी बताइए ना, आपके परिवार में और कौन कौन है आपके साथ में?
1: हमारी बीबी है, बेटा है, बेटे की जो है, एक पोती है, एक पोता है।
0: अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी?
1: मेरी उम्र 67।
0: अच्छा, 67 साल के हो गए आप, 67 वर्ष के हो गए, लेकिन रेडियो सुनने का शौक है आपको बहुत?
1: जी जी जी, 1970 साल से मैं रेडियो सुनता हूँ।
0: 1970 से आप रेडियो से लगातार जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। नियमित श्रोता से हमारी बातचीत हो रही है सुखराम

0: जल्दी से आ जाए ना।
1: पर मैं उस वक्त की याद, एक चीज याद आ रही है
0: जी,
1: उस वक्त रेडियो का लाइसेंस था 1971 साल में
0: जी।
1: एक बार क्या होगा, हमारे पिताजी लाइसेंस की चीज नहीं भरी थी, उस वक्त पोस्ट ऑफिस में हमारे रेडियो जब्त करके ले गई थी।
0: अच्छा।
1: और मैं रोने लगा था, रेडियो चुरा के लाओ, रेडियो चुरा के लाओ।
0: अच्छा।
1: और ज्यादा पैसे भरते
0: अच्छा, उस समय लाइसेंस बनता था रेडियो सुनने के लिए। वाह वाह सुखराम जी, आपकी दीवानगी तो जबरदस्त है रेडियो के प्रति, मान गए हम आज आपको। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाए सुखराम जी आपको?
1: जिंदगी
0: एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। अरे वाह वाह वाह, अंदाज फिल्म का बहुत अच्छा गीत पसंद किया, आपकी पसंद बहुत अच्छी है सुखराम जी।
1: जी जी, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, उसका संगीत भी अच्छा लगता है। और जो शूटिंग हुई थी ना
0: जी,
1: वो ओरिजिनल शूटिंग थी, वो स्टूडियो में ही नहीं थी।
0: ओरिजिनल शूटिंग होती थी स्टूडियो की
1: जी।
0: अच्छा ये बताइए कि कराड़ में किस जगह रहते हैं आप?
1: कराड़ में गांव में गए थे।
0: अच्छा, गांव कौन सा है आपका?
1: बहुत बड़ी सिटी है।
0: अच्छा, वहाँ रहते हैं। अच्छा, आसपास घूमने की कोई जगह अच्छी सुखराम जी आपके आसपास?
1: हमारे जो महाबलेश्वर है, ताजगनी है, प्रतापगढ़ है
0: जी, और कोंकण भी पास।
1: हाँ, कोंकण पास रहता है हमारे, 80-90 किलोमीटर रहता है।
0: अच्छा, 80-90 किलोमीटर ही है, मतलब पास में ही बहुत। गोवा का जो तट है, समुद्र तट है, वो भी पास में, आपके पास में।
1: जी
0: जी, और बताइए क्या कहना चाहते हैं सुखराम जी?
1: हमारे गांव में जो नदी है, हमारे गांव में पानी की कभी दिक्कत नहीं आती।
0: अच्छा, कौन कौन सी नदी है?
1: दो, एक कृष्णा है, एक कोयना है।
0: अच्छा जी,
1: और उस पर दो चार जगह बांध भी है, बड़े बड़े बांध है, कोयना दर में उसमें 180 एमसी का है
0: जी। बहुत अच्छी जानकारी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सुखराम जी आपने दी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम में?
1: अभी कुछ नहीं, अभी हो गया तो
0: अभी हो गया बस। आपकी हंसी बहुत अच्छी है सुखराम जी, ऐसे ही जीवन भर हंसते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। आकाशवाणी यही शुभकामना देती है आपको। और सुखराम जी,
1: मित्रों का नाम सर मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बोलिए।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र गौतम राव बोले जी, लोकेश वर्मा जी, गंगाधर सावरकर जी, दिलीप कहुजा जी, सुनील झा जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, केश और राजेश शेट्टी जी, उत्तल पवार जी, किरण सिंह जी, गौतम कोकड़ जी, कशिड़के जी, श्रीकांत भंडारे जी, अभिजय पाटिल सालोकर जी, रमेश जाधव जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: बहुत बढ़िया, ढेर सारे भारत भर के श्रोताओं के नाम आपने ले लिए सुखराम जी आज साथ में। तो सुखराम जी इसी तरह फोन लगाते रहिएगा ना।
1: तो कभी कभी लगता नहीं रहता है, और दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिलना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है आपकी सुखराम जी। तो इसी तरह जुड़े रहिए, फोन लगाते रहिए, फोन अवश्य लगेगा। और सतारा की पावन धरती पर आ रहा है आपकी पसंद का अंदाज फिल्म का ये गीत, सुखराम जी सुनिए।
1: आपका नाम जानना चाहता हूँ
0: जी। मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम छिंदवाड़ा से।
1: जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुखराम जी।
1: धन्यवाद
0: जी। लीजिए आपके रेडियो सेट पर आप भी सुनिए, कराड़ के पूरे श्रोताओं को भी सुनाइए अंदाज फिल्म का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं अखिलेश कोशे बात कर रहा था।
1: अखिलेश कोशे जी कहाँ से बोल रहे हैं अखिलेश जी आप?
0: मैं चारगांव करबल से बात कर रहा था, काफी दिनों से फोन कर रहा था, लग ही नहीं पा रहा।
1: आज लग गया, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप अखिलेश जी?
0: बहुत बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ।
1: अच्छे, खुश हैं?
0: हाँ जी,
1: ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही फोन लगाते रहिए, ऐसे ही गीत सुनते रहिए अखिलेश जी।
0: जी जी,
1: आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: मैं एक गीत सुनना चाहूंगा, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। हाँ जी, फिल्म का नाम बरसात की रात।
1: बताइए आपके शौक क्या क्या है अखिलेश जी?
0: संगीत का शौक है सर,
1: संगीत सुनने का शौक है।
0: प्रोग्राम सुनता हूँ, अनुरोध प्रोग्राम भी बहुत पसंद है।
1: लोक संगीत भी सुनते हैं, अनुरोध भी सुनते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित सभी।
0: गीत गंगा मेरा फेवरेट है सर।
1: गीत गंगा सुबह 7:20 पर आता है आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। और क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं से?
0: श्रोताओं के लिए सभी खुश रहे, मस्त रहे, गर्मियों में अभी कम से कम धूप में निकले।
1: जी हाँ, घर से खूब अच्छा पानी पी के खाना खा के निकले है ना, और लू से बचाव के हर उपाय करें।
0: ज्यादा तेल का खाना ना खाएं
1: जी,
0: और बासी भोजन ना पिए।
1: अच्छा संदेश आपने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया, और इस संदेश के बाद हम आपको जोड़ रहे हैं आपके पसंद के गीत के साथ में। अखिलेश जी रेडियो सेट पर तैयार हो जाइए, वॉल्यूम तेज कर दीजिए रेडियो का, क्योंकि अब रेडियो पर बजने वाला है बरसात की रात फिल्म का गीत। लीजिए सुनिए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: विकास साधनपुर प्रयागराज से। प्रयागराज
0: विकास जी, प्रयागराज से बोल रहे हैं?
1: हाँ सर। हाँ हाँ, कैसे हैं आप?
0: माँ गंगा की पावन नगरी से बोल रहे हैं विकास जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, जुड़े रहते हैं आपके भीलवाड़ा आकाशवाणी से।
0: बहुत अच्छी बात है, इतने दूर के उत्तर प्रदेश के श्रोता हमारे केंद्र से जुड़े हैं, इससे अच्छी खुशी और प्रसन्नता की क्या बात होगी विकास जी।
1: जी सर जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए।
0: और हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं आपसे बात करते हुए। बताइए क्या करते हैं विकास जी आप?
1: हम ट्रक चलाते हैं सर, आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा, ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक में ही बढ़िया रेडियो लगा होगा जिसमें आप प्रोग्राम सुनते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा हुआ है और सुनते रहते हैं आपका कार्यक्रम।
0: तो कैसे गीत सुनना पसंद करते हैं विकास जी आप?
1: सबसे ज्यादा जो

0: ये पुराने गाने होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी पुराने गानों की बात अलग है।
0: हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो तो अमर गीत हो गए हैं, बिल्कुल सदाबहार गीत हैं वो सब।
0: जी सर, जी जी, मतलब उसमें बहुत सारे के ऐसे गाने जो होते हैं सारे आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं,
1: मतलब बहुत ही गहराई से जुड़े हैं आप आकाशवाणी से।
0: हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब आपका और हमारा दिल का रिश्ता है विकास जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और प्रयागराज के बारे में बताइए, उस पावन नगरी के बारे में, उसका दर्शन रेडियो पर करवा दीजिए विकास जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यहाँ संगम है और यहाँ मतलब बहुत से ऐसे सर जगहें हैं आपके लिए, कभी आइए प्रयागराज, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: गंगा जमुना और सरस्वती के पावन संगम से बोल रहे हैं आप?
0: हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज के रहने वाले हैं
1: जी। और वही संस्कृति है, गंगा जमुना संस्कृति है जो पूरे भारत भर में बिखर रही है विकास जी इस समय।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाए विकास जी आपको?
0: जैसा कि आपने कहा दिल का रिश्ता हमारा और आपका है, तो आज हम इसी पर एक गाना सुनेंगे, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में वो गाना है और फिल्म का नाम भी है दिल का रिश्ता, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए। अर्थात आपका नाम क्या है?
1: जी मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम छिंदवाड़ा से विकास जी।
0: बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, हमारे कॉल ली आपके लिए, इसको बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो इसी तरह जुड़े रहिए, रेडियो से जुड़े रहिए, आकाशवाणी से जुड़े रहिए विकास जी, और हम आपकी लगातार प्रतीक्षा करेंगे आपके टेलीफोन कॉल की बार बार।
0: जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रयागराज की उस पावन नगरी पर अब आने वाला है आपकी पसंद का दिल का रिश्ता फिल्म का गीत, लीजिए सुनिए विकास जी।

0: हेलो आकाशवाणी
1: सर, नमस्कार। मैं न्यूट्रन नंबर 4 से विकास वासी बोल रहा हूँ। सर
0: विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: कौन सर बोल रहा है सर?
0: जी मैं धीरेंद्र दुबे बोल रहा हूँ, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम छिंदवाड़ा से।
1: सर गाना सुनना था, क्या मौसम आया है कितने सालों में, ये मौसम आया कितने सालों में। जी सर, मौसम अब सर चेंज हो रहा है सर, गर्मी के बाद सर अब बरसात आएंगी सर।
0: जी जी जी जी।
1: और सर इलेक्ट्रिशियन हूँ, कस्टमर के घर में काम कर रहा था, तो मैंने सोचा FMB बजा रहा था और मैंने कहा फोन लगा के देखूं, कॉल करके तो कॉल लग गया सर।
0: अच्छा इलेक्ट्रिशियन है?
1: जी इलेक्ट्रिशियन सर, पंखा कूलर रिपेयरिंग बिजली फिटिंग का काम करता हूँ सर।
0: जी जी विकास जी, बहुत
1: शुभ नाम देना चाहता हूँ सर।
0: बोलिए बोलिए।
1: कुलदीप पवरिया
0: जी,
1: हमारे दोस्त थे राकेश नाथ, स्वर्गवासी राकेश नाथ और हेमंत बहरिया, इनकी याद में सुनना चाहता हूँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दो कोचिंग बदल ली, लाखों खर्च कर दिए, फिर भी नीट क्लियर नहीं हुआ।
1: अरे समर्पण इंस्टीट्यूट गया क्या?
0: नहीं, वहाँ क्या खास है?
1: ये परासिया नाके पर है, जहाँ है अनुभवी शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं और ड्रॉपर्स पर खास ध्यान। पढ़ाई इतनी आसान कि समझ खुद आने लगे।
0: तभी पूरे शहर में नीट सक्सेस के लिए समर्पण इंस्टीट्यूट की चर्चा है।
1: हाँ, जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। क्लासेस 19 मई से प्रारंभ। समर्पण इंस्टीट्यूट, परासिया नाका, VIP नाका, छिंदवाड़ा।
0: बिल्कुल। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी, आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं श्रीलाल वर्मा जेम्स मॉडल भामोली खाले से।
0: बहुत बहुत स्वागत है श्रीलाल जी, क्या करते हैं आप?
2: और मैं मानूं तो आप मेरे बहुत प्रिय और पुराने और पूज्य अनाउंसर DG दुबे बोल रहे हैं आप?
0: बिल्कुल सही पहचाना है श्रीलाल वर्मा जी आपने, मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से।
2: सुबह कार्यक्रम सुना था आपका ना, गीत गंगा।
0: अच्छा, गीत गंगा कार्यक्रम सुना आपने,
2: अच्छा लगा आज।
0: चलिए बहुत अच्छा है।
2: फिर मैंने ठान ही लिया
0: जी
2: कि जैसा प्रोटोकॉल ये है कि एक बार यदि किसी का फोन लग गया
0: जी
2: तो कम से कम वो कुछ समय ना निकाले, लेकिन मुझको आपसे मिलने की बहुत तलब थी
0: जी,
2: इसलिए वो प्रोटोकॉल को भी मैंने नजरअंदाज कर दिया।
0: अरे क्या बात है, मतलब आज अपने को रेडियो पे मिलना ही मिलना था श्रीलाल जी।
2: बिल्कुल श्योरली सर, आई होप।
0: जी
2: और भी,
0: और जो आपने होप की वो आज पूरी हो गई,
2: यही सोच के कि अब क्या बताएं, है तो पुराने आपके शुभ चिंतक लेकिन गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं।
0: नहीं,
2: बहुत दिनों से आपसे नहीं हो पाते मुखातिब
0: जी। अब गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकल जाइए और रोशनी की तरफ कदम बढ़ाइए, खुशियों की रोशनी की तरफ।
2: बिल्कुल सर जी, जिस शिद्दत से सर आज आप इस सप्ताह का आपके गीत, ये गीत में मेरे पत्र को बड़ी शिद्दत से पढ़ा और प्रशंसा की, तो मुझे आत्मिक बिल्कुल बहुत सारा संतोष और प्रसन्नता हुई।
0: जी, बहुत अच्छे विचार आप अपने पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं श्रीलाल जी।
2: और मैं बड़े प्रयास करने के बाद में अपने, और आप दो लोग और भी ऐसे हैं महामहिम जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिनसे हार्ट अटैचमेंट है।
0: धन्यवाद, इसी तरह अपना ये जो भावनात्मक संबंध है वो बनाकर रखिएगा हमेशा आकाशवाणी।
2: बिल्कुल सर जी आना,
0: खूब अच्छा लग रहा है आज आपसे बात कर।
2: देखिए सर, इसी मुतासिर और इसी भरोसे और उम्मीद से तो आप और हम हैं, भलाई फेस टू फेस रूबरू नहीं होते हैं लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के नियरिस्ट है, अटैच्ड हैं।
0: तुमने पुकारा और हम चले आए,
2: जान हथेली पर हमेशा लेके चलते हैं सर।
0: खूब अच्छा बोलते हैं श्रीलाल जी, आप कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: जैसे कि सर सेंटेंस में कि फिर कोई शायराने अंदाज में,
0: शायराना अंदाज हो जाए तो क्या बात है फिर तो।
2: बस सर, हम तो यही कहेंगे कि तुमसे अच्छी है तुम्हारी

0: आगे जो आकर भी तड़पाती नहीं, तुम तो आकर चले जाते हो, तुम्हारी याद आकर भी जाती नहीं। हम तो ये कहेंगे कि श्रोताओं से भी कि रोज आप सभी लोगों से तो हम मिल नहीं सकते, लेकिन आत्मिक भाव से, आत्मिक चिंतन से एक दूसरे के करीब बिल्कुल हो सकते हैं। कि दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रहकर ना करो बात, आज करीब आ जाओ। एक मुद्दत से मिलने की तमन्ना थी दिल में, और धड़कते हैं जज्बात सीने में मेरे, हलचल मचाते हैं और करीब आ जाओ।
1: ये गीत भी तो बहुत अच्छा है मोहम्मद रफी साहब का, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ।
0: दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से भड़कते हैं बदन में सोले, आज बस में नहीं है जज्बात, करीब आ जाओ।
1: बहुत अच्छा लगा इसी लाल जी आपसे बातचीत करके।
0: सर मुझे तो आपकी बहुत दिनों से तलाश थी, बहुत अरसे हो गए गुमशुदा हुए हम।
1: गुमशुदा की तलाश पूरी हुई,
0: आपकी नजर से नजरअंदाज रहे हैं हम।
1: जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह फोन लगाते रहिएगा, हम आपके फोन कॉल का इंतजार करते रहेंगे। आज की इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: नमस्कार, आभार सहित।
1: नमस्कार जी।

0: सेकंडली पछताना पड़ा बार बार दुआ डोंट वरी इसमें कॉलेज या सेहत के बारे टाटा स्ट्राइडर भरोसेमंद सवारी ब्रांडेड कहाँ मिलेगी ब्रांडेड साइकिल के लिए मशहूर लक्ष्मी साइकिल का नया शोरूम चर्च के पास नागपुर रोड छिंदवाड़ा
1: प्रोडक्ट यानी स्ट्रेंथ सेफ्टी एंड स्टाइल
0: टाटा स्ट्राइडर लक्ष्मी साइकिल नागपुर रोड।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: जय जगन्नाथ नमस्कार।
2: जय जगन्नाथ नमस्कार। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: नारायण प्रधान जी ब्रह्मपुर विश्वगंजा उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
2: नारायण प्रधान जी उड़ीसा से बोल रहे हैं?
3: जी सर।
2: उड़ीसा में किस जगह से?
3: गंजाम ब्रह्मपुर।
2: नारायण जी क्या करते हैं आप?
3: मैं आइसक्रीम बेचता हूँ।
2: आइसक्रीम बेचते हैं?
3: जी सर।
2: अच्छा, तेज गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाते हैं सबको? ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाते हैं अलग अलग टेस्ट की? अलग अलग अच्छा, तो इस गर्मी के मौसम में हमको भी आइसक्रीम की याद दिलाती है नारायण जी आपने। आप दूर नहीं रहते तो आपसे आइसक्रीम लेके खा लेते अभी हम। जी, और बाकी क्या शौक है आपके बताइए?
3: मैं तो रेडियो सुनना शौक है। बचपन से रेडियो सुन रहा
2: हूँ। बचपन से सुन रहे हैं आप रेडियो?
3: मुंबई सुन रहा हूँ। आपका चैनल था
2: तो आकाशवाणी छिंदवाड़ा से भी जुड़े हुए हैं आप?
3: सर।
2: आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
3: फिल्म का नाम कुदरत गाना है। हमें तुम तो प्यार कितना हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
2: बहुत बढ़िया गाना पसंद किया है नारायण जी आपने। आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ?
3: जी सर। वो गाना मैं डेडिकेट करता हूँ मेरा खास दोस्त उदयवान ठाकरे और आपको भी।
2: बहुत अच्छे बोल हैं इस गीत के, आपकी पसंद बहुत अच्छी है नारायण जी।
3: जी सर।
2: उड़ीसा में और कुछ बताइए ना, कुछ घूमने की जगह? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वहीं पर है ना?
3: कोणार्क सूर्य मंदिर और हमारा उड़ीसा की पूरी जगन्नाथ मंदिर है। ये जगन्नाथ टेम्पल है वो हरियाणा का सबसे बड़ा टेम्पल है। हमारा जगन्नाथ भी आराध्य देवता है उड़ीसा की।
2: जी जी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, ये बात तो है। बहुत अच्छा लगा नारायण जी आज आपसे बात करके, और भी फोन लगाते रहिएगा हमको, है ना?
3: और अच्छा लगा आपके साथ बात करके, लेकिन मेरे को हिंदी टूटा मुटा या कुछ पता नहीं, हिंदी समझा कुछ समझेंगे।
2: नहीं, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं जी। नहीं तो वहाँ तो उड़िया चलती है आपके यहाँ?
3: लोकल लैंग्वेज है उड़िया।
2: अच्छा जी जी जी, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और इसी तरह भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं नारायण जी आप। बहुत धन्यवाद स्वीकार कीजिए आकाशवाणी की तरफ से आप। तो लीजिए, तैयार हो जाइए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है आपके उड़ीसा में रेडियो तरंगों के माध्यम से कुदरत फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए सुनिए।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी, शिवपुरी गांधी पार्क से आप बोल रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है मनोज जी।
1: बिल्कुल सर, कहें कि आज मेरे को तो रविवार का बहुत इंतजार रहता है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे श्रोता हैं उनको भी अगर थोड़ा सा मौका दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहेगा।
0: बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है मनोज जी।
1: बिल्कुल, और कहें कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा से तो इतना अपार प्रेम है, इतना अपार प्रेम है कि मैं कह नहीं सकता।
0: और ये प्रेम का अटूट बंधन यूं ही बंधा रहे मनोज जी, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: शिवपुरी के बारे में कुछ बताइए ना मनोज जी आज हमको।
1: जी जी बिल्कुल सर, कहें कि शिवपुरी की हाल इस समय बढ़िया है और तेज धूप पड़ रही है, तो धूप से बचाव कर रहे हैं और आकाशवाणी छिंदवाड़ा लगातार न्यूज और OIR के साथ जुड़े हैं और आपके विभिन्न कार्यक्रम सुनते रहते हैं। इतने अच्छे कार्यक्रम छिंदवाड़ा के लगते हैं कि अगर मैं अपनी मुंह से सभी टीम को धन्यवाद दूं तो सब कम पड़ जाएंगे।
0: इतनी अच्छी भावनाएं हैं। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे मनोज जी?
1: सर जी, आज सुनवा दो मूवी का नाम रहेगा 2 अक्टूबर।
0: 2 अक्टूबर जी,
1: उसमें एक गाना है चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
0: और बताइए हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे मनोज जी?
1: बिल्कुल, मैं तो श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा की जितनी भी श्रोता है बहुत प्यारे श्रोता है और इतना प्यार करते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से, इतना प्यार करते हैं कि जितना प्यार मैं करता हूँ मेरा प्यार कम पड़ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा के लिए आपके। मनोज जी, शिवपुरी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, कुछ बताएंगे वहाँ आसपास घूमने की?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो शिवपुरी है वहाँ भगवान शिव जी की नगरी है, कहेंगे बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है
0: जी।
1: तो वहाँ की एक विशेषता है कि साफ सफाई के मामले में वहाँ कहेंगे अब बहुत परिवर्तन आ चुका है और वहाँ कहेंगे गार्डन भी बहुत बेहतरीन गार्डन है, तो कहेंगे ये दोनों स्थान के लिए देखने के लिए बहुत दूर दूर से हमारे कहेंगे श्रोता और बहुत से जन घूमने आते हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, बिल्कुल विनती करता हूँ कि अगर कभी शिवपुरी मौका लगे तो आप जरूर आइएगा
0: जी। विश्व प्रसिद्ध छतरिया भी वहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मनोज जी आज आपने दी। इस तरह से एक नियमित श्रोता हमारे लगातार आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों को सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनसे बात करके हमको बहुत खुशी होती है, जैसी आज आपसे बात करके हो रही है मनोज जी। तो इसी तरह जुड़े रहिए और हम आपके रेडियो सेट पर मनोज जी भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा

0: दीजिए, सुनिए, अपने साथियों को भी सुनवाइएगा।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आपका कार्यक्रम आता है जी संडे को, तो कहे कि 2000 कस्टमर तो हमारे यहाँ से है कि आपका कार्यक्रम सुनने तौर पे ही आते हैं।
0: जी जी जी जी तो फिर से जुड़ जाइए रेडियो सेट से, वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि अब
1: बजने तो हो गया तेज सर, हो गया तेज। आपने कहा और फटाक से कर दिया तेज मैंने, और आप बिल्कुल गीत सुना।
0: चलिए चलिए, लीजिए सुनिए गीत। बहुत बहुत
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद आपको भी।

तो श्रोताओं, अब संपन्न होता है आज के इस कार्यक्रम का ये सफर। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। इसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर डायल करना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 8989116346। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8

9 1 1 6 3 4 6। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में हमें तकनीकी सहयोग दिया अनिल सिंह और राजेश ठाकुर ने, और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया आपके दोस्त धीरेंद्र दुबे ने। तो अब दीजिए कार्यक्रम से चलने की आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप, लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर
0: जी,
1: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है।
0: जी, और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्त

0: शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग दो पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
1: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है। और पिता के जमाने में जो फिल्में थी वो भी उनके कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
0: बिल्कुल,
1: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा जी, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
0: जी जी जी।
1: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
0: जी।
1: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का संगीत,
0: क्या बात है,
1: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
0: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मकता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे दे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे।

0: मजरूह लिख रही हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरी अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था,
0: जी,
1: हर
0: जी,
1: घर
0: जी,
1: में
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मज़ाहिर, ये चीज़ें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी ज़िंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता

गमे रोजगार होता। मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया, देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें। मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गए दहर में, लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज़ है, उसने दुख भी सबसे ज़्यादा उठाए हैं, सुख भी सबसे ज़्यादा उठाया है। तो

0: खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
1: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से यानी जाने जाते थे, फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
2: साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
1: जी।
2: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना
1: जी।
2: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना।
1: अब शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
2: वो हम लोगों का मिजाज
1: नतीजा है।
2: जी हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बायकॉट शुरू हो गया था
1: जी।
2: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने ये तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी
1: जी,
2: उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ।
1: अच्छा।
2: अपनी आजाद अरबी पर
1: जी।
2: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी और कामयाब तबाबत की, लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाद जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है
1: जी।
2: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा।
1: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
2: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार
1: जी।
2: चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी, जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी।
1: अच्छा,
2: उसके चेयरमैन
1: थे।
2: तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
1: अच्छा।
2: तो मैं वहाँ तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक
1: जी।
2: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहां से गुजरे और मैं उनके जेर साया, शेर तो पहले कहता ही था लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजे हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
1: दानिश्वर
2: बड़े बड़े आते थे, और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के शोरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
1: शऊर आया।
2: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई समत मुहैया नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुसबत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुसबत हो, मनफी बात ना हो,
1: निगेटिव
2: नहीं हो, हाँ ना हो, इतना तो जरूर रहा,
1: पॉजिटिव एटीट्यूड।
2: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहाँ एक दिन, तो कहने ले भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। चुनाचे सन 45 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ, और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो जैसे होता है ना, एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना असद मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: जिगर मुरादाबाद।

0: उसमें फिल्म मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई मेरी आवाज बड़ी
1: नहीं। सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं।
0: एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुतालिक से के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं
1: जी,
0: नया कम पैसे लेगा
1: जी।
0: चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और लिमिटली मुझे 500 रुपए माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे, तो जो गया यूं मैं फिल्म लाइन में आया।
1: अब शाहजहां के तो गाने बड़े मशहूर हुए थे
0: जी हाँ,
1: जब दिल्ली टूट गया
0: तो उनको सैगल मरहूम पसंद था, कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए। बचता हुआ चुना चला और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल्ली टूट गया हम जी के।
1: उससे तो और भी शोहरत,
0: जी हाँ शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई, लेकिन फौरन ही। मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने
1: जी,
0: वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लैंड नहीं है
1: जी,
0: प्लैंड कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के हिस्से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर होती उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ, और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक समझ मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इसको मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए, बल्कि उसका एक सामाजिक रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था,
1: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
0: यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
1: लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
0: कर सकता है। मतलब आप दयाशंकर नसीम की मसलन लीजिए, गुलजार नसीम
1: जी,
0: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
1: जी,
0: कि नेकी करो
1: जी,
0: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती, लेकिन जब हमने अर्थ जैसा अर्थ किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
1: जी,
0: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना सामाजिक नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ, उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो हैं उनको तोड़ फोड़ डाला गया
1: और नए अकदार बने।
0: हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमत ने लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
1: लेकिन मजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
0: जी,
1: जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: जी हाँ, ये
1: आप इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
0: हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे
1: जी,
0: एहतशाम हुसैन साहब
1: जी,
0: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
1: जी।
0: इत्तेफाक
1: तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से
0: शऊरी कोशिश? तो देखिए जनाब
1: जी,
0: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
1: अच्छा,
0: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजाहनी, कुमार अबार बंकी, इस तरह के, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से हमें गालियां पड़ी कि साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तनहा मैंने कहे हैं,

0: और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरी उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूं। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव
1: पाँव
0: की
1: की
0: नजर
1: जंजीर न
0: न
1: देख
0: देख। शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे,
1: जी।
0: शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई
1: कोई
0: मुझे,
1: मुझे
0: मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहर न हो।
1: वाह।
2: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है,
1: जी
2: जो
1: जी
2: एक
1: जी
2: उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
1: बिल्कुल
2: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहने है?
1: क्या बात है।
2: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम हैं मताए कूचा हो बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और समारंगी।
1: समारंगीन समझ गए
2: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का
1: वाह।
2: दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब
1: जी
2: का,
1: हाँ जी हाँ।
2: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना। इस तरह के जो
1: क्या
2: गाने हैं,
1: रेंज क्या
2: क्या रेंज
1: रेंज
2: है, देखिए
1: वाह।
2: ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ, एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले
1: आईएस
2: रहा
1: जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप,
2: हूँ
1: कमाल के कलाकार। और श्रोताओं आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का, बड़े मियां दीवाने।
2: आप गाना सुनिए।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों की

सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: तुमको भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म

सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली। जूली, I love you। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था,

0: और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

0: चढ़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही हैं। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

0: ही पड़ेगा।
1: पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: नवराई माची लड़ाची लड़ाची ग, आपड़ ही ला चंद्राची चंद्राची ग।
0: सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता मैंने, मेरे हाथ में किधर है।
1: जी जी
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: वैसे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपनी श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों

0: प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का ये गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल, नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक

पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच ना होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं। दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं। सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आह तूने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों की लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो। वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नज़र नहीं आते उनसे बातें होती हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा? है ना, कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है। बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुर लहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं श्रोताओं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं,

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम, ये गीत जो हैं जब छम से विविध भारती के ज़रिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। श्रोताओ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को नमस्कार, और आज की इबारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेट रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नज़दीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नज़दीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफ़र संग प्रश्न पहेलियों का इंतज़ार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नज़र नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियाँ अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज़्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये ज़िंदगी का सफ़र, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में।

वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फ़ोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फ़ोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था।

कैफी आजमी की ये रचना थी हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को ख़त लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफ़र सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगें सिर्फ आवाज़ नहीं पहुँचाती, बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर, यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतज़ार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं? वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूर संचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज़ की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफ़र के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी हवाओं पालकी परदेसियों, प्यार दास्तान देहरादून रंगून, गम उठाने ख्याल मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर ये जानकर भाई आपकी नींद ख़राब तो ज़रूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हमने सनम को ख़त लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई ख़त ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस ख़त का इंतज़ार है, या फिर इंतज़ार ख़त्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये ख़त नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतज़ार रहता है, ना वो ख़त आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये ज़िंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती

खुशबू आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नज़र आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो ज़रूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मज़मून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफ़र में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पाल की रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नज़दीकियां परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहाँ तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियाँ नहीं होंगी तो नज़दीकियों का क्या मज़ा, इसलिए दूरियाँ हैं तो नज़दीकियाँ हैं और जब नज़दीकियाँ हैं तो उन नज़दीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

जनक में यकीन मानिए श्रोताओ, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयाँ लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हों, दो हों, तीन हों, बेशुमार हों, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओ, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार ज़रूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्म आया गया, भारत भूषण भी नज़र आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक ख़ास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नज़र नहीं आया है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के ज़रिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डॉक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिया का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा ज़बरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मज़ा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मज़ा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात ज़रा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी, और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थीं वो थोड़ी देर से पहुंचती थीं, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराज़गी चल रही है, यानी कट्टी हो गई है, कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी ज़रा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियाँ केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती

0: फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं, जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून, देहरादून, हवाओं, पालकी सवार, चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर, इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाज़ें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: Oh, damn.

मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हजरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आँखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने, चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला VBS के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है, संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में सपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा,

है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थीं, जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थीं और इंतजार में भी एक मिठास होती थी, किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बनकर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज़ में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आँखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थीं। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: फैंटेसी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज़ और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नज़दीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

श्रोताओ, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया, शमशाद बेगम चितलकर की आवाज़ें थीं। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज़ हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं एक बजे, सुरीला सफ़र की बागडोर संभाल रही हैं, इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो ज़रूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत ज़रूर पहुँचे।

शरीक शोधा ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए, और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी की यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टसन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ है। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन में शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग्व देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। इससे पहले कल शाम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मांडू के संत महामंडलेश्वर निसर्गदास जी महाराज भोजशाला पहुंचे और पूजा अर्चना की। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। जबलपुर जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। वहीं गेहूं उपार्जन कार्य में विदिशा जिला में 59,000 से अधिक किसानों से खरीदी हुई। इसके लिए जिले में कुल 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें विदिशा अनुविभाग में 51, ग्यारसपुर में 16, गंज बासौदा में 23, कुरवाई में 19, नटेरन में 31, सिरौंज में 20 तथा लटेरी में 14 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश

0: के भी अन्य जिलों में भी खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में से 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। ये पहल जनगणना अभियान के डिजिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में जौनपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होने के चलते इटारसी से गुजरने वाली 12 ट्रेनें डायवर्ट की गईं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर कोई बस चलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले में कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: For 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
4: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
5: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने

0: ये उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाज़ों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात

0: जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड

0: हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

महेंद्र कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का यह गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, सौभाग्यवती भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता अढ़िया और उर्वी बेन अढ़िया ने इसे पसंद

और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला।
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है। ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य।
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए
0: भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी

0: सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
1: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुया देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
1: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचा आए।
3: अरे अरे मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
1: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
3: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है
3: जी।
0: कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
3: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
3: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
3: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
3: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
3: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
3: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
3: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
3: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
3: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
3: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चक्री, अब अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
3: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
4: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
3: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
3: अच्छा।
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
3: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइएगा।

0: नदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
1: इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे, तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली सनसन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है, और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है, एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है,

0: भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
1: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
0: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
1: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
0: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
1: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
0: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
1: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली। और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
0: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
1: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
0: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
1: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
0: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
1: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
0: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
1: सच?
0: हाँ।
1: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
0: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान।
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरदगोत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ, माँ,
3: प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो। धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो। और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या

0: सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
1: बेटी, तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे, ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
2: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे। जा, लौट जा।
3: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
1: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि

0: ちゃ。
1: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्राव, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
1: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
3: बाबा, बाबा।
2: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
3: बाबा,
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
3: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रिय बताओ, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो। सखी, तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
3: अनसुया,
0: शकुंतला,
3: तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
2: इतनी अधीर ना हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
3: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
4: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी।
3: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
4: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
3: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
1: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरणग्रह, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

कन्या सचमुच प्रायतन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
0: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।
1: चलिए करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कोई, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डेटे भी जाएंगे वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लें तो, मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुना उन्होंने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने ज़माने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज़ ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं

0: करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक आज भी और उस वक्त भी जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं
1: बहुत
0: दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत
0: जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए,
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: को अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे से कहा ये जी, वो तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था गड़बड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई? इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरे एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है एक रमेश तलवार को नहीं, ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे,
0: हाँ।
1: उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली,
0: हाँ।
1: बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी,
1: मराठी में
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: हाँ, हाँ। वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत से फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय
0: हाँ।
1: करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,

0: वाह,
1: उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही।
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलदार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था। गुलदार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश वैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा,
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा, डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
0: हाँ, ये कौन है?
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
0: ओके,
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
0: उन्होंने ही बोला?
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
0: हाँ
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
0: डन हो गया,
1: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पर, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
0: हाँ।
1: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना।

0: तो ये कई फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ,
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ,
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ,
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह हाँ, नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूँगा तेरे। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोले ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती हैं। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की।
0: हाँ।
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार।
0: हाँ।
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउट।

0: में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश पायल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वो सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने, जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में काम रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोनियाक पी, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है,
1: अच्छा
0: यश जी को मैंने सुनाया था, कोनियाक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनियाक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। Charlie.

0: ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो ज़रा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

उनकी नजरों की जरा सी इनायत हो जाए तो कयामत के बादल बिजलियां गिराने को आतुर हो जाएंगे। जरा सा एक एहसास दिल को होने लगा है, वो मेरा है, मेरा होने लगा है।

0: हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं।
1: बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है।

अंतराल के बाद छाए गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

0: उनकी उल्फत में ज़रा सी शोकियाँ हैं, नादानियाँ हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर ज़रा मेरे दिल की मजबूरियाँ देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।
1: ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार।

मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दो, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब होगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिंसी वैश, आपके अपने विचारों की साथी। साथियों, ये मई का महीना, तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान, ऐसा लगता है जैसे हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर देगा। दोस्तों, आजकल थोड़ी देर धूप में निकलते ही थकान होने लगती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और ऊपर से पढ़ाई, करियर और भविष्य की चिंता, ये सब बन जाता है हमारे तनाव का कारण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये लगातार बढ़ता तनाव और अनियमित जीवन शैली आपकी सेहत पर कितना असर डालती है? मित्रों, यहीं से जुड़ा है हमारा आज का विषय, युवाओं में बढ़ता ब्लड प्रेशर। साथियों, आजकल हाई बीपी यानी बढ़ता ब्लड प्रेशर ना सिर्फ बुजुर्गों की समस्या रह गया है, बल्कि युवाओं के बीच भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी गंभीर विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसका उद्देश्य लोगों को हाई बीपी के लक्षण, कारण और बचाव के प्रति जागरूक करना है। साथियों, जब हमारे शरीर में बहने वाला खून नसों की दीवारों पर सामान्य से ज़्यादा दबाव डालता है, तब इसे हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप कहते हैं। मित्रों, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य बीपी लगभग 120 से 80 mmHg माना जाता है, लेकिन अगर बीपी बार बार 140 से 90 mmHg या उससे ज़्यादा आए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, इसके मुख्य कारण हैं ज़्यादा तनाव, नींद कम लेना, ज़्यादा नमक का या ज़्यादा तला भुना खाना, जंक फूड का सेवन करना, व्यायाम ना करना, मोटापा, धूम्रपान आदि सभी कारणों से युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिससे आपकी किडनी खराब भी हो सकती है। श्रोताओं, सबसे बड़ी बात यह है कि हाई बीपी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण शुरुआत में समझ नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार सिरदर्द, चक्कर, थकान, घबराहट, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो रही है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं आपको भी हाई बीपी तो नहीं है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि हाई बीपी का बचाव कैसे किया जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको बस कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी होगी, जैसे इन दिनों गर्मी के मौसम में दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए, रोज़ाना दिन में 30 मिनट की वॉक, योग व एक्सरसाइज करिए, फास्ट फूड और ज़्यादा नमक से दूरी बनाइए, हरी सब्जियाँ, ताज़े फल और हल्के भोजन को अपनी डाइट में शामिल करिए, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग कम करिए और सबसे ज़रूरी अपनों से बात करिए, रोज़ाना अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। श्रोताओं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेहत को पीछे छोड़कर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सपने

0: पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ युवा ही मजबूत भविष्य की पहचान है। तो आइए हम सब मिलकर इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर ये संकल्प लें कि हम अपना तनाव कम करेंगे और इस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखेंगे। इसी सकारात्मक विचार के साथ साथियों, समाप्त करती हूँ हमारी आज की बात को और आइए अब सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: दो कोचिंग बदल ली, लाखों खर्च कर दिए, फिर भी नीट क्लियर नहीं हुआ।
2: अरे समर्पण इंस्टीट्यूट गया क्या?
1: नहीं, वहाँ क्या खास है?
2: ये परासिया नाके पर है, जहाँ है अनुभवी शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं और ड्रॉपर्स पर खास ध्यान। पढ़ाई इतनी आसान कि समझ खुद आने लगे।
1: तभी पूरे शहर में नीट सक्सेस के लिए समर्पण इंस्टीट्यूट की चर्चा है।
2: हाँ, जल्दी अपनी सीट बुक कराएं, क्लासेस प्रारंभ। समर्पण इंस्टीट्यूट, परासिया नाका, VIP नाका, छिंदवाड़ा।
1: बिल्कुल।

0: আকাশবাণী এট 90।
1: श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं हमारे अगले क्रम एक फनकार से, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुस्कान की जो दिल जीत ले, एक ऐसी अदाकारी की जो हर किरदार में जान डाल दे, और एक ऐसी डांसर की जिनके नृत्य और एक्सप्रेशन ने लाखों लोगों को दिल में बसा दिया। जी हाँ साथियों, हमारी आज की फनकारा है सुपरहिट धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। श्रोताओं, माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान, अदाओं और शानदार डांस से करोड़ों दिलों पर राज किया। दोस्तों, बात करें इनकी जन्म की, तो इनका जन्म 15 मई सन 1967 को मुंबई के एक छोटे से परिवार में हुआ था। मित्रों, माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में आई फिल्म अबोध से की, जहां शुरुआत में इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन माधुरी ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार संघर्ष करते रही और फिर आया साल 1988 और फिल्म थी तेजाब, जिसका मशहूर गीत 1 2 3 में माधुरी के ज़बरदस्त डांस ने उन्हें बना दिया रातों रात सुपरस्टार, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।

0: दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें थी अलका याग्निक की और इस गीत को शब्दों में सजाया था जावेद अख्तर साहब ने।
1: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: साथियों, माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी। हम आपके हैं कौन, दिल, साजन, देवदास, दिल तो पागल है जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की सबसे बड़ी अभिनेत्री बना दिया। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी एक और सुपरहिट फिल्म बेटा का ये गीत, जिसमें माधुरी दीक्षित को बना दिया हम सब की धक धक गर्ल।

0: कहाँ है तेरी धुआं उड़ाती बाइक?
1: रिटायर्ड कर दी। ये ब्रांडेड साइकिल लक्ष्मी साइकिल स्टोर से खरीदी है, कलरफुल स्टाइलिश और दमदार ढेरों साइकिल है वहाँ। बी स्मार्ट, बी ग्रीन, राइड सेफ।
0: ए, तुझे इको बॉय बनने का सडन शौक कैसे लगा?
1: पेट्रोल और पोल्यूशन से, अब नो पेट्रोल नो पोल्यूशन नो टेंशन, साथ में फिटनेस और सेविंग भी।
0: मैं भी कॉलेज के लिए साइकिल लाऊंगी।
1: लक्ष्मी साइकिल स्टोर, नागपुर रोड, फुपुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा।
2: दोस्तों, माधुरी दीक्षित को अपनी शानदार अदाकारी और अभिनय के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, माधुरी की सबसे खास बात यह है कि उनकी सादगी, विनम्रता और मेहनत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, समय बदला, फिल्में बदली, लेकिन माधुरी का जादू कभी कम नहीं हुआ। नई पीढ़ी के साथ भी उन्होंने अपने डांस और अभिनय का वही रंग जमाया। साल 2011 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी में उनके डांस और एक्सप्रेशन ने एक बार फिर लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
3: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

दोस्तों, माधुरी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि मेहनत, प्रतिभा और बेहतरीन अदाकारी की एक मिसाल है। उनका शानदार नृत्य, मनमोहक एक्सप्रेशन और दिल छू लेने वाली मुस्कान हमेशा लोगों के दिलों में यूं ही जिंदा रहेगी।

इसी अंतिम गीत के साथ साथियों समाप्त होता है हमारा आज का क्रम एक फनकार। और आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं हमारा आज का इतिहास। दोस्तों आज ही के दिन सन 1498 में पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुँचे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब यूरोप से समुद्री मार्ग के जरिए सीधे भारत तक पहुँचा गया। सन 1975 में आज ही के दिन जापान की पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। और 2010 में आज ही के दिन भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सभी 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। और आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं हमारे कल के आकर्षणों के क्रम, जिसमें सबसे पहले होगी हमारी आज की बात भारत की सांस्कृतिक धरोहर इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर। इसके बाद क्रम करियर कामयाबी में आप जानेंगे एग्री स्टार्टअप और खेती से जुड़े करियर के बारे में। इसके बाद आपके पसंदीदा गीत संगीतों का क्रम, तरुणों की पसंद, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अंत में होगी ज्ञानमयी अमृतवाणी। और आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं हमारी आज की अमृतवाणी क्या कहती है।

ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत कभी हारी है, है हौसला ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है। इन्हीं सकारात्मक पंक्तियों के साथ साथियों, समाप्त होता है हमारा आज का युगवाणी कार्यक्रम। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हर रोज़ सुनते रहिए कार्यक्रम युगवाणी। आपकी रेडियो दोस्त प्रिंसी वैस को दीजिए इजाज़त। शुभ संध्या।

अभी युवा मित्र सुन रहे थे युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए गैर फिल्मी गजलें।

ये थी गैर फिल्मी गज़लों की पहली पेशकश, जिसमें आपने सुनी भूपिंदर की गाई गज़ल। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गुलजार की कही गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप गुलजार की गज़ल सुन रहे थे। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गज़लें, और कार्यक्रम में अगली गज़ल बशीर बद्र साहब की, आवाज़ संजय गुप्ता की, मौसिकी नंदा दास की।

आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं खैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम में

गैर फिल्मी गजलों में अभी आप तलत अजीज की आवाज में गजल सुन रहे थे, कलाम इब्राहिम अश्क का था। और अब गैर फिल्मी गजलों की आखिरी पेशकश चंदन दास की आवाज में पयाम सईदी का कलाम।

चंदन दास की गाई इसी गज़ल के साथ अब ख़त्म होता है गैर फिल्मी गज़लों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में आपने सुना आशिकी 2 फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत और रचना थी मिथुन की। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत 72 आवर्स इस फिल्म से मोहित चौहान और प्रियंका नेगी की आवाज़ों में।

मोहित चौहान और प्रियंका नेगी की आवाज़ों में अभी आप 72 आवर्स इस फिल्म का गीत सुन रहे थे। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं 1920 लंदन इस फिल्म से, शारिब तोशी की आवाज़ें, अजीम शिराजी का गीत, शाहिब तोशी का संगीत। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शारिब तोशी की आवाज़ों में 1920 लंदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत एजेंट विनोद फिल्म से हंसिका और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में, अमिताभ भट्टाचार्य का गीत, प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत में ये अगला गीत एक्शन रीप्ले फिल्म से, कार्तिक और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें, इरशाद कामिल का गीत, प्रीतम का संगीत।

कार्तिक और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में एक्शन रीप्ले फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल का गीत था, प्रीतम का संगीत था। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: अनुपम अनोद की आवाज में अभी आप आक्रोश फिल्म का गीत सुन रहे थे। इरशाद कामिल का गीत था, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ खत्म होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। अब दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब यटन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउ डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगें पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, सुनिए 4 साल के मासूम बच्चे के गुम होने के संबंध में सूचना। थाना लावा घोगरी के अंतर्गत नीबूखेड़ा जिला छिंदवाड़ा निवासी देवीलाल शीलू पिता सीताराम शीलू का नाती शिव कुमार शीलू अपने पिता के साथ पलंग पर सो रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण किया गया है। वो दिनांक 6 मई 2026 बुधवार से गायब है। गुमशुदा का नाम शिव कुमार शीलू, उम्र 4 वर्ष, चेहरा गोल, कद 2 फीट, रंग सांवला, शारीरिक बनावट दुबली पतली है, हरे रंग की शर्ट पहना है, हल्की फुल्की हिंदी बोलता है। इस बच्चे की यदि किसी को कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत इन नंबर्स पर संपर्क करें। कंट्रोल रूम प्रभारी नंबर 7566537304, थाना प्रभारी लावा घोघरी 6265247515, जांच अधिकारी 9131417843। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
4: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 7:10 होने ही वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल केंद्र से।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
7: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में वाघ देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। आज विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों को विश्व दूरसंचार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेटकर विश्व को परिवार जैसा बना दिया है, जीवन सहज हुआ है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं पहल करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या मायगांव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में एक निजी रिसॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 में शामिल हुए।

0: उन्होंने यहाँ लगाई गई विकास व वैचारिक प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
1: कम विदम में दुनिया का भय भला नहीं किया, रोटी भी नहीं मिली, अभ्यर्थी की स्वतंत्रता भी चली गई। अमेरिका जैसे देश आए, हमारे एक हाथ में रोटी है, एक में अभ्यर्थी की स्वतंत्रता है। मतलब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भारत जिस पश्चिम के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा है, तब वो पश्चिम सुखी है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जरा अपने देश की तरफ भी तो देखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम राष्ट्र समाज जीवन की रचना करके देश को सुखी बना सकें, लोगों का कल्याण कर सकें।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। सीहोर में आज अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुना जिले में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: सर आप जाके बोल दो फेडर दे दो, कहना एसटी बच गई है। फेडर दे दो एसटी बच चुकी है।
1: ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सभी किसान भैया हरों को और प्यारी बिन्ना हरों को खूब स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम। कैसे का हाल चाल है भैया हरों और कैसे चल रही है खेती किसानी के सभी कामकाज? और भैया हरों पूर्व आकाशवाणी परिवार आपके परिवार की आपके पशुधन की और आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना सोई करत है। मनो देखो भैया जेठ की तपत दोपहरिया देखो ऐसी हो गई है कि जैसे सूरज जो है आग बरसा रहा है, धरती पूरी तप उठी है बिल्कुल, है कि नहीं? और गांव-गांव में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, का अपने पशुधन और का अपने झाड़ झंकाड़ सब बिल्कुल ऐसे झुलस से जाते दिन में कि कछु पूछो नहीं। लेकिन हम सबके मिलके स्वास्थ्य और खेती किसानी दोनों को ध्यान सोई धन्य है। तो भैया हरो आप लोग तो काम कर रहे हूँ खेतन में, जोताई सोई लगी भई है और सभी जने इंतजार कर रहे कि तनक झला पानी गिर जाए तो तनक सी ठंडक हो जाए। और हमारी बिन्ना हरे तो पूरे घर परिवार के कामकाज में बिल्कुल अपने उमें लगी भई हैं। मनो दोपहरिया में अगर बिन्ना हरे ध्यान धन्य हैं अपन खे भी कि अपने घर के जो मौड़ा मौड़ी हैं खास तौर पे बेका है, अब लग गई स्कूलों की छुट्टी है तबे दिन भर देखो तो धमा चौकड़ी सोई मचात रहे थे। तो ऐसी धमा चौकड़ी ना मचाएं, ये खिलाने बहुत ही जरूरी है कि उन्हें घर में अच्छे से ध्यान से रखें और दिन में अच्छे से खिला पिला के सुला दें। मनो वे सोत कहाँ हैं, बे तो बह रहते होते भागत हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों के खाबे पीबे को ध्यान सोई धन्य है, उनको शरीर तपे नहीं एके लाने जरूरी है छाछ लस्सी नींबू पानी ये सब देने हैं। लेकिन जे बात ध्यान धन्य है बिन्ना हरो कि आप औरों को कोई भी हाल में कहने चाहिए कि वो नहीं देने हैं, पेय पदार्थ नहीं देने हैं। और भैया हरो बहुत जरूरी है कि हमें अपनी भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लाने जरूरी है कि गुणवत्ता बना के रखने हैं। और किसान भैया हरो भूमि की उर्वरता बनाए के लाने जैविक खाद और जैविक कृषि को हमें ध्यान सोई धरने हैं।

बुंदेली समाचार। नमस्कार, डॉक्टर रानी रेखवार से सुन हैं आप बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो गई। श्री मोदी की जय यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर हो रही है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लाने अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की पूरी संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र और ऑर्बिटर मिशन में भी शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है। जा दिवस को उद्देश्य इंटरनेट और ऐसे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विश्व दूर संचार दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहो कि संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेट के विश्व को परिवार जैसो बना दो है, जैसे जीवन सहज भाव है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लाने स्वयं पहल करबे और दूसरों को भी प्रेरित करबे को प्रदेशवासियों से आह्वान करो है। जनगणना को कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार के लाने घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों को विवरण जुटाओ जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वयं गणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जा पहल जनगणना अभियान के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानो जा रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सवेरे नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू करी गई। जय ऐतिहासिक पल के गवाह बनबे के लाने सूर्योदय के संग ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग्देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे हते। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना करोगा। SDM ने हरी झंडी दिखाके जो विशेष वाहन को विकास खंड के गांवों के लाने रवाना करो। अभियान को उद्देश्य खरीफ सीजन की बुआई से पहले किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों और शासन की योजनाओं की जानकारी देनो हतो। और खबर अब मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्म की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू को असर बनुभव है। एक ही संगे बुंदेली समाचार भय समाप्त।

नमस्कार किसान भैया हरो, हेलो ग्राम सभा के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी को बहुत ही स्वागत है। और आज की हेलो ग्राम सभा में आप सभी सुन हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे फोन करके सीधे बात कर सकते हैं स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से। आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है ग्रीष्मकालीन जायत की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, डॉक्टर अशोक वर्मा जो विभागाध्यक्ष हैं कृषि संकाय में RNTU में। और देखो किसान भाइयों, अगर आपको समस्या से का समाधान लेना है तो आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। तो फोन नंबर आपको मैं जल्दी से बताती हूँ, आप नोट कर लें, 0755-266-0902 और 266-0903। और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कृषि कार्य के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो

0: जब तक हम करते हैं अपने डॉक्टर साहब से बात, तब तक आप लगाइए हमें फोन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम। और आज हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपका सर कि आप आएंगे, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको बताएंगे कि ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य, क्योंकि हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम सबका पसंदीदा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले
1: बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, किसान भाइयों को।
0: जी, अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन की बात करें तो ये एक समय ऐसा होता है कि जायद की फसलों के लिए बहुत समसामयिक माना जाता है। तो अभी कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे खेतों में हैं किसान भाइयों के?
1: देखिए अभी जो मुख्य फसल है जायन के समय में, तो अधिकतर क्षेत्रों में मूंग की फसल, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मूंग की फसल काफी क्षेत्र में बोई जाने लगी है, और जहां पानी की अच्छी मात्रा में है तो किसान भाई मूंग की फसल ले लेते हैं।
0: हेलो।
1: तो इसके अलावा भी मान लो हम बात करेंगे तो बेलवर्गीय सभी फसलें।
0: उमा शंकर जी मिली जा रही है, आप इंतजार करिए, थोड़ा होल्ड करिए, मैं आपकी बात कराती हूँ।
1: बेलवर्गीय सभी फसलें सब्जियां इसमें ली जा रही हैं, और जहां तक कि हम फल फ्रूट की बात करें तो अभी आम अभी फलन पे है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ बीमारियां कीड़ों इसमें लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको देखते रहना, निरंतर निगरानी करनी है। और अमरूद की हम बात करें या फल की बात करें तो अमरूद में हमें देख रेख करनी है, और जिन खेतों में अभी खेत खाली हैं तो उनमें किसान भाइयों को मिट्टी का नमूने लेने हैं, और नमूने के आधार पर अगर मान लो उसका जो भी मिट्टी के नमूने से जो भी इसमें रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से
0: जैसी अनुशंसा मिले वैसी आपको काम करनी है।
1: मात्रा में
0: बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर हम जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख रूप से मूंग को माना जाता है, तो अगर हमारे किसान भाइयों ने मूंग अगर रखी है तो उसके लिए क्या आप अनुशंसा करते हैं?
1: देखिए अभी मूंग अगर मान लो समय से लगा दी होगी तो लगभग अभी 30 से 35 दिन की मूंग हो गई होगी, और फ्लावरिंग या फूल पे या फलियों पे होगी मूंग, तो उसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि अगर मान लो कोई बीमारी, उसमें निरंतर निगरानी करनी है, उसमें अगर मान लो कोई बीमारी या उसमें कीड़े का प्रकोप या माहू या सफ़ेद मक्खी का प्रकोप उसमें दिख रहा है तो उसमें आपको उचित अनुशंसित मात्रा में उसमें दवाई आपको स्प्रे करनी है। अगर मूंग ठीक दिख रही है, अगर मान लो आप एक या दो स्प्रे कर चुके हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे करने की आवश्यकता लगे, तभी आपको इसमें दवा की स्प्रे करना है। आपको किसान भाइयों को सिर्फ निगरानी करनी है, और फलियों में अगर मान लो कई बार देखा फलियों में फली इल्ली भी आती है उसमें, और माहू की समस्या इस समय जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी अगर मान लो बढ़ रही है, पानी देते हैं इसमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे समय में माहू और दूसरे कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। अगर जैसे बादल से हो रहे हैं या बादल का मौसम है या कहीं पानी गिर गया तो ऐसे समय में भी कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है।
0: बिल्कुल, आपने कहा कि अभी जैसे कि कभी भी बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ये जो अचानक से मौसम परिवर्तित होता है, ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें?
1: वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बताया कि किसान भाइयों को उसमें ऐसे समय में जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बादल हो गए या पानी गिर गया, तो ऐसे समय में किसान भाई को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो खेत की या वातावरण की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण बीमारी और कीटों का प्रकोप अधिक लगता है, तो ऐसे में किसान भाई फसलों के निरीक्षण करते रहे, देखते रहे।
0: अच्छा, उमा शंकर जी आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
1: अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसमें दवाई डालने की, अगर थोड़ा भी अगर मान लो उसमें कीड़े या बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं
0: तो तुरंत उपचार करें। बिल्कुल, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
2: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
0: उमा शंकर जी बोल रहे हैं सागर से?
2: जी।
0: तो क्या सवाल है आपका उमा शंकर जी? पहले ये तो बताइए सागर के मौसम का हाल बताया।
2: मैम अच्छी से गर्मी पड़ रही, बहुत जम के
0: बहुत गर्मी पड़ रही है।
2: जी जी मैम।
0: अच्छा, तो क्या सवाल कर रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ से?
2: मैम मेरा एक सवाल तो ये है कि मूंग तो है ही मेरी लगी हुई है थोड़ी सी, तो उसमें क्या थोड़ी पत्तियां सी सूख रही हैं,
0: और
2: दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि भिंडी लगाई है, भिंडी में सूख मतलब ये जाला जाला सा बन जाता है और सफेद हो रही है भिंडी।
0: जी डॉक्टर साहब बताइए जरा।
1: देखिए भिंडी में अगर मान लो जाला हो रहा है तो उसमें मकड़ी का प्रकोप होता है।

0: टेम्परेचर बढ़ने के बाद, है
1: जी
0: ना। मकड़ी आप देखिए, उसमें से पत्तियों के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपको लाल लाल से धब्बे जैसे दिख रहे होंगे, आप
1: जी,
0: देखिएगा,
1: देखते हैं
0: है
1: मैम,
0: ना। तो ये
1: देखते
0: रेड
1: हैं
0: माइट होती है, उसके
1: जी
0: इलाज के लिए आपको एक माइटीसाइड दवा आती है, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और
1: जी
0: जहाँ
1: मैम
0: तक आप जैसे बोल रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद जैसे उस पर पत्तियों पे अगर ऊपर तरफ उसके लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू भी इसमें आती है।
1: जी
0: जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है या टेम्परेचर अधिक है और ह्यूमिडिटी अधिक है, तो उसमें ये फफूंद नाशक की आवश्यकता होगी आपको इस स्प्रे करने की। तो कार्बनिज़म, आप इस कार्बनिज़म 50% में आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के मान से आप उसमें स्प्रे कर दीजिए, तो ये अगर मान लो पाउडर मिल्ड्यू का उसमें प्रकोप हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बात उद्यानिकी फसल की बात हो रही है, भिंडी की बात हो रही है, क्योंकि भोजन वाली बात है, ऐसे में जैविक क्या उपाय कर सकते
0: हाँ
1: हैं हमारे
0: देखिए,
1: किसान?
0: जैविक के
1: हेलो
0: लिए टेम्परेचर अधिक
1: हेलो
0: रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैविक में नीम ऑयल का एक बहुत
1: हेलो
0: अच्छा, नीम
1: जी
0: ऑयल
1: मैम,
0: एक बहुत
1: हाँ जी, कहाँ
0: अच्छा
1: से बोल रहे हैं
0: जैविक
1: आप, कौन बोल रहे हैं?
0: कीट नियंत्रण करता है। उस
1: जी
0: ये
1: नाम
0: तीन सौ
1: बताइए।
0: पी पी एम एक हज़ार पी पी एम और 10,000 PPM,
1: अच्छा
0: 3,000 PPM
1: तो
0: में आता
1: आप
0: है। तो
1: लाइन पर बने रहिए, हम
0: नीम
1: आपको
0: का स्प्रे
1: बात
0: आप
1: करवाते
0: अगर
1: हैं
0: मान लो
1: विशेषज्ञ
0: निरंतर
1: से।
0: करते रहेंगे, 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के, तो ये प्रकोप आपको पहली बात तो आएगा नहीं, अगर मान लो जैविक तरीके से आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप निरंतर उसमें निगरानी करते रहिए। अगर हर 10 दिन 15 दिन में आप 15 दिन के अंदर नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको उसमें कीड़े
1: इसमें
0: नहीं
1: फायदा
0: लगेंगे।
1: मिलेगा
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल। तो हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: जी मैम,
1: हेलो
2: नमस्कार, मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर से।
1: नरेन जी, सीहोर का क्या मौसम है, कैसी क्या फसलें लगी हैं?
2: मैम मूंग की फसल लगी है, मौसम तो मैडम वही है, 40-42 के आसपास में टेम्परेचर चल रहा है।
1: जी हाँ जी हाँ, तो क्या प्रश्न है आज आपका?
2: मेरा ये प्रश्न है सर से कि हमने मूंग लगाए थे, उसमें सफेद मन का बारीक इल्लियां लग रही है, और कुछ पौधे मैडम नीचे से आनी घानी से काले पड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: नहीं
1: नीचे मूंग बारीक इल्लियां लग रही हैं जी।
0: देखिए, इल्लियां लग रही हैं तो उसमें एक एंडोस्कार नाम की दवा आती है 15.8 SC में, करीब 120 से 130 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं इल्लियां के लिए। और एक इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप इसको लगभग 90 ग्राम प्रति एकड़ के मान से, सेव जैसी दवा होती है आपने देखा होगा, 5 5 SG में आती है, उसको आप स्प्रे कर दीजिए। इल्लियों का प्रकोप हो रहा है तो ये बिल्कुल चली जाएगी। एक क्लोरोट्रेनी प्रोल नाम की दवा होती है,
1: हेलो
0: इसको 18.5 SG
1: नमस्ते जी, नमस्ते, हेलो ग्राम
0: चालीस
1: सभा से।
0: मिलीलीटर
1: हेलो
0: प्रति एकड़ के मान से इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, तो
2: जी,
0: ये
2: किसी कारण बोल रहा
0: इल्लियों
2: हूँ,
0: इल्लियों का प्रकोप
1: कौन
0: आपका
1: बोल रहे
0: चला
1: हैं, कहाँ से
0: जाएगा।
1: बोल रहे हैं?
0: ये तीन में से
2: डॉक्टर
0: कोई भी एक
2: किसी कारण
0: दवा, तीनों
2: बिहार
0: नहीं
2: से
0: डालनी,
1: नेपाली
0: तीनों में से
2: जिले
0: कोई भी
2: से।
0: एक दवा
1: अच्छा
0: जो
1: जी,
0: आपको
1: आप लाइन पर
0: मिल
1: बने रहिए,
0: जाएगी,
1: हम आपकी बात
0: तो
1: करवाते
0: इसको
1: हैं।
0: आप आराम से डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे एक और किसान से हम बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: नमस्ते बहन जी,
1: नमस्कार भैया
2: डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से नियमित श्रोता हूँ।
1: जी, बिहार से फोन करे हैं
2: जी,
1: तो भाई, बिहार में कैसा क्या मौसम चल रहा है, गर्मी पड़ रही है कि पानी गिर रहा?
2: बहुत गर्मी पड़ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, आम लीची सब गर्मी से सूखा जा रहा है। जी
1: सूखा जा रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब से प्रश्न है बिहार से?
2: मूंग जो है ना, पूरा पुष्ट दाना वाला फल नहीं आ रहा है।
1: अच्छा,
0: क्या पूछ रहे हैं थोड़ा सा एक बार,
1: दाना
0: क्या
1: ठीक से नहीं आ रहा है मूंग में?
0: मूंग में दाना नहीं आ रहा है? देखिए, मूंग में
2: पुष्ट
0: दाना
2: दाना
0: नहीं
2: नहीं
0: बनने
2: होता,
0: का
2: पुष्ट
0: कारण है,
2: दाना खुखरा
0: आपने
2: हो जाता है।
0: उसमें कुछ खाद वगैरह डाला था क्या मूंग में?
2: जैविक डाला था,
0: हैं,
1: जैविक डाला था।
0: जैविक डाला था? देखिए, जैविक के साथ में थोड़ा सा पूरा जैविक खेती कर रहे हैं क्या आप?
2: थोड़ा सा जिंक मिला दिया था बाद में, जिंक
0: हैं,
1: बाद में जिंक मिला दिया था इन्होंने।
0: अच्छा जिंक मिला दिया था। देखिए, मूंग में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है, फास्फोरस और पोटाश लगता है ना। तो अगर मान लो उसमें दाने कम बन रहे हैं, तो अभी भी आप उसमें 052-34 का एक स्प्रे कर दीजिए,
2: जी
0: 052-34 का एक स्प्रे कर दीजिए, तो दाने थोड़े अच्छे बन जाएंगे। कितनी फली, अभी फूल आ रहे हैं कि अभी फली
2: फूल आ रहे हैं, लेकिन पुष्ट दाना नहीं बनता अंदर में।
0: हाँ, तो उसमें 052-34 आप एक स्प्रे कर दीजिए, 2 2 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से, है ना, ये घोल को इस पर स्प्रे कर दीजिए पूरी फसल पे, तो दाने अच्छे बन जाएंगे और भर के आएंगे, है ना।
2: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: हाँ, उसमें क्या खाद की कमी लग रही है मुझे, जैसे आप

0: बता रहे हैं खाद की कमी है ना।
1: तो हमारे जो जागरूक किसान हैं वो लगातार हमें फोन कर रहे हैं और आकाशवाणी केंद्र भोपाल से हमारे किसान भाई सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन जायत की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और लगातार हमारे
0: हेलो
1: जो किसान भाई हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और
0: हेलो
1: अपने प्रश्नों के उत्तर आप सीधे हमारे स्टूडियो में उपस्थित
0: हेलो
2: हेलो
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: दीदी, मनोज नाम ले बोल रहा हूँ, शिवपुरी मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा मनोज जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
2: दीदी दीदी
0: जी
2: आपकी आवाज रेडियो पर सुनाई दे रही, जब आप कहती हो कि आप लाइन पर रहिए तो इस पे आप
0: हाँ
2: गौर करें आप।
0: हाँ हाँ आप
2: ठीक है
0: अभी लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
2: ठीक है ठीक है दीदी,
1: हम उनसे बात करते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, आकाशवाणी भोपाल।
1: जी बताएं भैया, क्या हाल चाल
2: जी
1: है?
2: जी जी बिल्कुल, बहुत ही बहुत बढ़िया है दीदी। तो बता दें जल्दी बंदी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है दीदी मनोज नामदेव।
1: अरे नाम दो भैया, कैसे हैं और शिवपुरी को कैसो का हाल चाल चल रहे हैं? पानी आनी गिर रहा हो कि नहीं गिर रहा हो?
2: हाँ दीदी, पाई माई तो कुछ नहीं गिर रहा हुआ है, और बिल्कुल जो समझ लो कि गर्मी पड़ रही बहुत जोर से, तो
1: है
2: बस हमारे जो टिकटिकी लगी थी कि रविवार आ जा, सो हेलो हेलो ग्राम सभा फोन लगा दे।
1: बिल्कुल मनोज भैया, हम भी पूरी बिल्कुल हफ्ता भर इंतजार सोई कर रहे थे कि भैया हमारे भैया हरों से बातचीत हो जाए तो और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो आज डॉक्टर अशोक वर्मा बैठे हैं अपने सामने और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कृषि कार्य में प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
2: जी बिल्कुल दीदी, हम जो प्रश्न कहानों के हमारे खेत में भटा लगे थे और अभी भी लगे, लेकिन क्या हो रहा हुआ है कि अभी 8-10 दिन पहले थोड़ा बूंदाबांदी हो गई थी, सो बाद ना से भटे को ऐसा मर्सो बिगड़ हुआ है कहानों के, भटा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल हल्के हल्के से रह गया, और कथम कथम देखो सो वहां में थोड़ी सी इली भी लग रही है।
1: तो कितने
2: तो
1: दिन
2: हमने
1: के हो गए
2: सोची
1: भटा आपके
2: दीदी, क्या कह रही हैं आप,
1: कितने दिनों के हो गए हैं
2: दीदी? अबे तो भटा खूब तोड़ रखे, हम बेच भी जाते हैं।
1: अच्छा, तो फलन पे है पूरी तरीके से।
2: हाँ
1: जी
2: बिल्कुल
0: देखिए मनोज जी, उसमें दो
2: जी
0: चीज हो सकती है। एक उसमें ये जो ये आपके जो सब्जी है फल है उसमें मक्खी आती है ना, मक्खी
2: ठीक
0: कह रहा
2: है
0: हूँ
2: ठीक
0: आपके,
2: है
0: इल्ली आती है ना, फ्रूट उसको बोलते हैं फ्रूट बोरर
2: ठीक है।
0: और एक शूट बोरर होता है। दो तरह के इसमें कीड़े हैं, फ्रूट और शूट बोरर। तो इसके लिए आपको अगर मान लो पत्तियां आपको दिख रही हैं मुरझी हुई हैं, ऊपर की तरफ की पत्तियां अगर
2: बिल्कुल
0: मान लो
2: सही
0: मुड़
2: बात
0: रही
2: है,
0: हैं या
2: बिल्कुल सही
0: मुरझा
2: बात
0: रही हैं, तो उसमें ये इल्ली का प्रकोप है, या शूट एंड फ्रूट बोरर। तो
2: ठीक
0: उसमें
2: है
0: आपको दवा डालनी पड़ेगी। और खाद पानी अगर मान लो आपने दिया है, खाद
2: ठीक है
0: पानी आपने अगर मान लो दिया है, DAP वगैरह दिया है, तो आप जैसे बता रहे हैं उसमें बढ़वार नहीं हो रही फलों की क्या,
1: जी हाँ,
0: है
1: इनके
0: ना?
1: कम फल लग रहे
0: तो
1: हैं।
0: उसमें बढ़वार नहीं हो रही, तो DAP तो आपने डाल चुके हैं, तो उसमें आप 052-34 और 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपके फल फूल अच्छे लगेंगे। और अगर मान लो उसको इल्ली का प्रकोप है, तो उसमें कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, इंडोस्कार्ब हो गया, या आपका क्लोरोपायरीफास, एक स्प्रे आप उसमें कर दीजिए, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें एक स्प्रे कर दीजिए, अल्लाह इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो, है ना? बाकी उसमें कोई समस्या आप देखते रहेंगे, तो उसके हिसाब से उसमें उसमें नियंत्रण के उपाय करते रहिए।
1: बिल्कुल, एक और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
0: हेलो
3: हाँ जी नमस्कार,
1: कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: मैं ग्राम बड़ा गांव तहसील कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
1: जी धाकड़ जी, कैसे हैं आप?
3: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया, बताइए भैया क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये है, अनार का पेड़ है अपने, उसमें अनार अनार के पेड़ में इल्ली है।
0: अच्छा
1: कितने दिन का पेड़ हो गया है आपका?
3: जो हो गया 4-5 साल का हो गया।
1: जी
0: खेती कर रहे हैं क्या आप उसमें, कि ज्यादा पेड़ हैं कि एक आध दो ऐसे हैं?
3: एक आध दो ही है घर
0: अच्छा
3: में है, अपने घर में मकान पे ही बोप रहे हैं।
0: हाँ।
3: जी
0: तो देखिए अगर फल के अंदर आपके इल्ली आ रही है, तो उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड आप उसमें, इल्ली वाली आती है जैसे क्लोरोपायरीफास से भी हो जाएगा, है ना?
3: जी
0: क्लोरोपायरीफास दवा आती है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए, तो इससे इल्ली का प्रकोप चले जाएगा। एंडोस्कार भी आप डाल सकते हैं, दोनों दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए, तो इल्ली ख़त्म हो जाएगी। उसमें क्या फल के अंदर कुछ स्पॉट जैसे भी दिख रहे हैं क्या, भूरे भूरे?
3: हाँ जी सर, मतलब जो अनार को अपन मतलब फोड़ के देखते हैं तो बा में

0: काला काला निकलता है।
1: हाँ, तो उसमें एक बीमारी भी होती है, एंथ्रोग्नोस आता है उसमें। अगर बीमारी है तो उसके एक फंजीसाइड भी उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, है ना, प्रोपिकोनाजोल एक स्प्रे कर दीजिएगा, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, तो वो अगर कोई फफूंद नाशक फफूंद टाइप की बीमारी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी।
2: बिल्कुल।
1: ठीक है।
2: ये जो फल और सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई जैविक उपाय करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा
1: जी
2: रहेगा, तो जैविक उपाय करते समय किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें?
1: देखिए, जैविक उपाय किसान भाई अगर मान लो करना चाह रहे हैं तो उसको शुरू से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में जैसे किसान भाई सबसे पहले अगर मान लो उसको बीज को लगा रहे हैं तो उसमें बीज उपचार कर दें,
2: शुरू से ध्यान रखें। हाँ। बिल्कुल, आपकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हेलो,
2: कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हाँ दीदी नमस्ते।
2: नमस्ते भैया, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज बासोदा से।
2: अच्छा जी, साहू जी गंज बासोदा से बोल रहे हैं।
3: कैसी हैं आप?
2: बढ़िया भैया, बढ़िया। आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। हेलो ग्राम सभा, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
3: हमारा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है, मूंग लगी हुई है हमारी
2: जी,
1: हाँ जी।
3: तो उसमें इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, ऐसी कौन सी दवा डाली जाए जिससे निजात हो?
2: जी
1: देखिए, एक आध स्प्रे कर चुके हैं क्या उसमें? एक आध दवाई डाल चुके हैं?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, एक आध दवाई डाल चुके हैं क्या उसमें कोई सी?
3: नहीं अभी तो नहीं डाली, अभी नहीं दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही, हम कल से देख रहे हैं तो नहीं दिख रही है कहीं।
1: तो एक क्लोट, एक क्लोट ट्रानिल प्रोल आती है दवा, है ना, वो मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, वो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना, 18.5 SC उसका उसमें रहता प्रतिशत रहता है 40 मिलीलीटर, एक एकड़ में आप इसको स्प्रे कर देंगे। 100 ml की छोटी डब्बी आती है तो वो करीब उसमें जाएगी, 100 एक हेक्टेयर में जाएगी, 2.5 एकड़ में जाएगी, उसका पहला स्प्रे कर दीजिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, एक बारिश में ही आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर वो नहीं है अवेलेबल तो इंडोस्कॉर्प भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेनोसिड भी यूज़ कर सकते हैं आप, 2-3 तरह की दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी।
2: ये आप जब दवा की मात्रा बता रहे हैं और उसके डालने का तरीका भी बता रहे हैं, कभी कभी हमारे किसान भाई सोचते हैं ज़्यादा दवा डालते हैं।
1: हाँ, ये
2: इसके लिए आप थोड़ा सा
1: देखिए बताएं। देखिए, ये किसान भाई को बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कभी भी जो अनुशंसित मात्रा है वो उस मात्रा से कभी भी दवाई ज्यादा ना डालें,
2: अपने मन से कुछ ना करें।
1: हाँ, दवाई ज्यादा ना डालें ना कम डालें।
2: बिल्कुल,
1: कम डालेंगे
2: तो फायदा नहीं होगा,
1: तो फायदा नहीं होगा, और ज्यादा डाल देंगे तो रेजिस्टेंस पावर
2: बिल्कुल
1: डेवलप हो जाएगा।
2: फोन और हम ले लेते हैं आपकी आज्ञा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और किसान भाई। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: नमस्कार महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिला सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
2: जी तोमर जी, कैसे हैं?
4: आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी,
2: भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। भैया क्या सवाल है आज का?
4: सवाल मेरा ये है कि मैंने कद्दू भर की सब्जी लगाई, उसमें कद्दू में फूल आ रहा, फल नहीं भर रहे हैं।
2: अच्छा, कद्दूवर की फसल में फूल आ रहा है, फल नहीं आ पा रहे हैं। जी बताएं।
4: उसमें कद्दू की फसल में?
1: हाँ, कद्दू की फसल में ना, तो इसमें खाद वगैरह आपने अच्छे से डाला था खाद वगैरह?
4: बिल्कुल बिल्कुल, जैविक खाद डाला, कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में डाला।
1: अच्छा, तो उसमें फल मतलब जो फूल से फल जो बनता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्या?
4: हाँ, फूल बन रहा है लेकिन फला एक भी नहीं बना अभी तक।
1: नहीं, इसमें क्या जनरली ये सब्जियों सब्जी वर्गियों में फसलों में क्या होता है, हमें ये खाद की मात्रा में अच्छी देनी पड़ती है ना। अगर याद उसमें क्या भूरे भूरे कुछ इसमें स्पॉट हो रहे हैं या सड़ रहे, सड़न जैसी टाइप की दिख रही है क्या?
4: नहीं, कोई नहीं, कोई रोग नहीं लग रहा है, केवल अच्छी तरह से बढ़ रहा है, फूल आ रहा है।
1: हाँ, या तो ठीक है, आप फिर उसमें अगर नहीं है तो कुछ खाद वाली चीज जैविक डाल रहे हैं तो आप इसमें सागरी का एक दवा आती है समुद्र घास से जो बनती है, उसको आप 5 मिलीलीटर स्प्रे कर दीजिए, उसमें क्या सभी तरह के पोषक तत्व, तो मुझे जो लग रहा है पोषक तत्व की कमी है तो उसमें सभी तरह के पोषक तत्व, तो जैविक दवा है, जैविक तरह की वो खाद की दवा है, तो उसको आप डाल देंगे तो उससे आपका ठीक हो जाएगा।
2: बिल्कुल, पोषक तत्वों की बात हो रही है तो जब अगर हम फसल बोते हैं तब इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बीज उपचार अच्छे से हो। तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
5: जगवान सिंह बोल रहे हैं।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: ग्राम सगोरिया, तहसील बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से जगवान सिंह ठाकुर बोल रहे हैं।
2: जी भैया ठाकुर साहब, कैसे?

0: से हैं?
1: है मैडम, आप कैसी हैं?
0: हम बढ़िया हैं भैया। तो क्या प्रश्न है आज आपका?
1: मेन प्रश्न ये है कि थोड़ी गिल्की के सैक राख पेड़े लगा है 100 के लगभग,
0: हाँ
1: उनमें फूल आ रहा है और मुड़ जाके झड़ रहे हैं।
0: जी, गिलकी
1: अच्छा,
0: में फूल आके मुड़ के झड़ रहे हैं।
2: नहीं कौन से वाले
1: जी
2: झड़ रहे हैं? एक उसमें दो तरह के फूल होते हैंगे, एक मादा फूल एक नर फूल।
1: अब ये तो डॉक्टर साहब नहीं जानते,
2: अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
1: जो लगे
2: फल
1: वो
2: फल
1: थे।
2: बन रहे हैं क्या, गिलकी बन रही है?
1: नहीं, फल नहीं बन रहे, फूल लग और जा जाते हैं और वो झड़ जाते हैं।
2: अच्छा देखिए,
1: हाँ
2: मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ पोषक तत्व की कमी हो सकती है, तो पोषक तत्व के लिए आप जैविक तो नहीं कर रहे हैं?
1: नहीं, जेब नहीं कर रहे
2: हाँ तो उसमें आप 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए, है ना? उन्नीस
1: जी।
2: उन्नीस उन्नीस एक खाद आता है तरल वाला, उसको आप स्प्रे कर
1: जी
2: दीजिए, 2 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। और सब्जियों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले तत्व भी आते हैं जिसमें सभी तरह के तत्व होते हैं, इस तरह का कुछ उसमें खाद पानी न्यूट्रिशन डाल देंगे तो ये फल नहीं, फल गिर रहा है या फूल से फल नहीं बन रहा है, तो उसमें पोषक तत्व की कमी है, ये
0: बिल्कुल।
2: आपको समझ में आना
0: एक
2: चाहिए।
0: ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नर फूल और मादा फूल,
2: हाँ
0: अभी जैसे हमारे किसान भाई कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा,
2: हाँ
0: तो जरा इसकी पहचान बता दीजिए।
2: देखिए वो देख के समझ में आ जाता है, नर फूल होगा जो वो खड़े में ऐसे ऐसे में रहेगा और उसमें मतलब बड़ा रहेगा, उसमें फूल दिखेगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। और जो मादा फूल थोड़ा छोटा रहेगा और उसमें आप देखेंगे कि फल, जैसे ये फूल खत्म होगा तो उसमें ये गिल्की या उसमें फल बन जाएगा।
0: छोटा सा बनना तो दिखेगा
2: हाँ
0: वो उसमें, है ना। तो
2: हाँ
0: हमारे किसान भाई इस बात की जांच कर सकते हैं, तो
2: हाँ
0: बिल्कुल हमारे किसान भाई इसका प्रयोग
1: हेलो
0: करेंगे।
1: ग्राम सभा
0: हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते भैया।
1: संजू अहरवाल जी बोल रहा, पिपरिया कड़कड़ जिला सागर से।
2: जी
1: जी संजू
2: बोलिए।
0: भैया, बताएं क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है दीदी, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी तो पड़न तो भैया बिल्कुल, अपनी खेती किसानी सोई अच्छी हो जाए है। तो बताओ क्या प्रश्न है आज?
1: प्रश्न जो है, हमारे बिही के कुछ फल गिर रहे और अनार के, तो किस कारण से गिर रहे हैं, जाए
2: किसके
1: जानकारी चाह रहे
2: काय के?
0: हैं। बिही और अनार के, अमरूद और अनार।
2: हाँ। अच्छा अमरूद के, ये गर्मी वाला फल लिया क्या आपने?
1: नहीं, गर्मी वाले नहीं लिए, अभी फल अभी फूल ही है।
2: अच्छा फूल है। देखिए अभी
1: हाँ
2: तो वैसे अब अगर ये आप ठंडी वाली बहार लेना है, दो बहार आती है, एक तो अभी चल रही है और एक आती है ठंडी में, है ना? तो ये अभी
1: हाँ
2: अभी आप कितने सभी फल पे हैं कि कम है अभी?
1: सभी फलते हैं सर, सभी के फल झड़ रहे हैं।
2: नहीं उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ बीमारी टाइप की हो या?
0: अभी आप अभी तक आपने कितने उसमें से फल ले चुके हैं?
1: उनसे तो हम हर साल लीना को लेते हैं,
0: कितने साल
1: मतलब पुराने
0: पुराने हो
1: वालों
0: गए
1: के,
0: आपके पेड़?
1: खरीदने के नहीं लेते हैं।
2: कितने कितने साल पुराना पौधा आपका?
0: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ, गर्मियों के फल नहीं लेते हैं, जो ठंडी में और वसकारे में जो निकलते हैं उनके फल लेते हैं।
2: हाँ, तो देखिए अभी अगर उसमें ज़्यादा फल नहीं है तो उसकी अभी कटिंग कर दीजिए, है ना? ये उचित समय है, मई जून में, मई में कटिंग हो जाती है और ऊपर से
1: उन्हीं
2: उसमें कॉपर एक्सोक्लोराइट को
1: उन्हीं तो
2: बहुत,
1: डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हैं,
2: हाँ
1: इसीलिए काट नहीं पा रहे हैं।
2: अच्छा फल हैं, तो फल हैं तो फिर उसमें मुझे जो लग रहा है कि इस टाइम में क्या है, अमरूद में फल कम आते हैं, है ना? या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इसके वजह से भी गिर सकते हैं, और उसमें एक दूसरा कारण है कि अगर मान लो आपके पोषक तत्व की कुछ कमी हो सकती है, इस वजह से भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और फल रोक नहीं पा रहा है, तो इसके कारण से भी, दो कारण से गिर सकते हैं, एक टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एक पोषक तत्व की कमी है। अगर
1: हाँ
2: ज़्यादा
1: बिल्कुल,
2: फल है तो उसको अभी फल लगे रहने दीजिए, जितने ले सकते हैं उसमें ले लीजिए, कुछ एक आध आप पोषक तत्व डाल दीजिए उसमें, है ना? उसके बाद जब फल खत्म हो जाए तो उसकी कटिंग कर दीजिए ज़रूर, है ना? कई बार क्या होता है अपन कटिंग करते नहीं है, ये अभी जैसे फल खत्म हो जाए इसकी कटिंग कर दीजिए, तो आपके बारिश में उसमें कोपले आ जाएंगी, और बारिश में पूरी कोपले आने के बाद नवंबर दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर से उसमें फल फूल लगने लगेंगे, तो वो
0: बिल्कुल
2: फसल ठीक रहेगी आपके
0: बिल्कुल
2: लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक और किसान भाई से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: जी नमस्ते मैडम। जी
0: नमस्कार।
3: मैं जगत सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन।
0: अच्छा जी, रायसेन से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी अभी मूंग में फूल आ रहा है, तो ऐसी कौन सी दवाई कि थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ये खट्टा फूल आ जाए?
0: अच्छा, इकट्ठे फूल आ जाएं, थोड़े
2: हाँ
0: थोड़े आ रहे
2: देखिए एक
0: हैं।
2: ह्यूमिक एसिड आती है ना?
3: जी
2: ह्यूमिक एसिड का
3: जी

0: कर दीजिए तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी आती है, बढ़ जाते हैं फल फूल, है ना। ये तो ये क्या बोलते हैं इसको, टॉनिक टाइप का बोलते हैं इसको अपन अपनी भाषा में, ये जाइम या कोई भी जाइम वाला है चीज़ है ये, है ना। ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए तो उस फल फूल उसमें बढ़ जाएंगे, है ना, अगर
1: बिल्कुल
0: फूल पे है। और एक 052-34 का स्प्रे के साथ में भी कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड को, तो उससे आपके फल फूल अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है।
1: तो
0: फली अच्छी आएगी, दाने अच्छे बनेंगे।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार जो है वो अपनी बात हमसे कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अगर कुछ खेत अगर खाली हैं हमारे किसान भाइयों के, तो वो किस तरह से खरीफ की तैयारी कर सकते हैं?
0: देखिए अभी खेत खाली है तो ये समय सही उचित समय है कि इसका सॉयल का सैंपल ले लें या मिट्टी का परीक्षण करने के लिए उसका सैंपल ले लें, है ना। और 3 साल में कम से कम आप एक बार जरूर सॉयल का सैंपल लेके उसके भूमि का उसके पोषक तत्व की जांच जरूर कराएं। इससे क्या होता है कि आपके ज़मीन में क्या किस चीज़ पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की मात्रा ही आपको डालनी चाहिए, क्योंकि आपके ज़मीन में अगर नाइट्रो

0: सॉयल का सैंपल ले लें या मिट्टी का परीक्षण करने के लिए उसका सैंपल ले लें, है ना। और 3 साल में कम से कम आप एक बार जरूर सॉयल का सैंपल लेके उसके भूमि का उसके पोषक तत्व की जांच जरूर कराएं। इससे क्या होता है कि आपके ज़मीन में क्या किस चीज़ पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की मात्रा ही आपको डालनी चाहिए। क्योंकि आपके ज़मीन में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन कम डालना है, फास्फोरस ज़्यादा है तो फास्फोरस कम डालना है। तो भूमि का आप तो सबसे पहले उसका वो करा लें, टेस्ट
1: परीक्षण
0: करा
1: करा
0: लें,
1: लें
0: हाँ
1: ना।
0: सॉयल टेस्टिंग करा लें उसकी। दूसरा, अभी जैसे आपने अगर मान लो खेत खाली है, खेत छोड़ के रखा है या खरीफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार प्लाउ 3 साल में एक बार, जो अनुशंसा है 3 साल में एक बार प्लाउ गहरी जुताई जरूर करा लें। उससे जो आपके जो कीड़े जो निरंतर चलते रहते हैं खेतों में, या बीमारियां हैं जो ऐसी जो हर हर साल आपको बीमारी कीड़े आते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। पलट इसको 3 साल में एक बार प्लाउ अनुशंसित वैज्ञानिक तरीका है, उसमें आपको जरूर कराना है।
1: बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या समसामयिक सलाह देते हैं कि इस गर्मी में कैसे अपनी फसलों को रखें? अच्छा
0: देखिए, आप सबसे पहले तो जैसे मूंग है, तो मूंग में आपकी अभी फली बन रही होगी, इस पर आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए। और स्वस्थ है तो उसमें कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और सब्जियों का भी, आप सब्जियों का जैसे अभी ये जितनी बेलवर्गीय फसलें हैं, फल हैं, और इसको आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए,
1: जी
0: और कोई समस्या आने के बाद ही उसमें दवा डालिए।
1: बिल्कुल,
0: अननेसेसरी
1: पहले से
0: दवा
1: नहीं
0: पहले
1: डालना
0: आप
1: है
0: जैविक तरीका अपनाइए। अगर
1: और
0: जैविक
1: उसके
0: से
1: बाद
0: कंट्रोल हो जाता है,
1: रासायनिक करें।
0: अगर जैविक तरीके से उसका उपचार नहीं होता है तो हमें केमिकल पर जाना
1: बिल्कुल,
0: पड़ता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, समय की सीमा का ध्यान रखना है। हेलो ग्राम सभा को हम यहीं देते हैं विराम। जिन किसान भाइयों ने हमें फोन किया उनको हृदय से धन्यवाद, और उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज का हेलो ग्राम सभा का विषय था ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ थे हमारे साथ में डॉक्टर अशोक वर्मा, और कार्यक्रम अधिकारी थे श्री चंद्रशेखर शर्मा, ड्यूटी ऑफिसर बबीता भंडारी, कंट्रोल रूम अधिकारी किशन गुप्ता और विजय कामले, उद्घोषक हमारे साथ थी सरिता सिंह, और मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। तो चलते चलते कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको दे दें। कल सुबह कृषि चर्चा में 6:45 पर सुबह जरूर सुने उद्यान लगाने की तैयारी कैसे करें डॉक्टर विजय अग्रवाल से, और लोकरम फरमाइशी हमारे जो है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम जरूर सुने। तो अब हो रही चलबे की बिरिया, दे रानी बहन को अनुमति। राम राम, जय सीताराम।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

बिरला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, छोटी गुड़िया नूर, नमन, गुरकीरत, सिमरत, गुरशब्द से हैं राहुल और विजेंद्र कुमार जयजान। कोटा भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। साथ में हैं धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। तो आइए आपकी पसंद के आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी पसंद के गीतों को लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त अमित सोनी। तो आइए आपकी पसंद के गीतों को सुनवाने का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। साहिर ने इस गीत को लिखा है, जयदेव की तर्ज है और इस गीत को पसंद करने वाले हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कांबड़े, करुणा, मीना और विपुल कांबड़े।

दोस्तों, कार्यक्रम आपकी पसंद में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। अपनी फरमाइश हम तक भेजी जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनके पूरे परिवार ने, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। साथ ही अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है गफ्फार बाबू, राम, आशीष यादव, तेज प्रताप शाही, रविशंकर सतवई, जितेंद्र गुप्ता, राहुल पाल, वीरेंद्र सिंह और आप सभी हैं नॉर्थ चांदा मीटा से, एजी अंजाना, रुखसाना बेगम, सज्जन भाई, हुमा शायमा। रिंगवे छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और कठुआ जनेटा जिला संभल से हैं नूर मोहम्मद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद नोमान और हमजा अली। और आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है मदन मोहन का। सुनिए इस गीत को आपकी पसंद पर।

0: आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 होने ही वाले हैं और ये समय है भोपाल से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम डगर विकास की। इसका अभी आपको सुनवाते हैं ये कार्यक्रम और इसके पश्चात पुनः आपसे जुड़ेंगे आपकी पसंद में कुछ और गीतों को लेकर। अभी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम डगर विकास की।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय

0: विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफ़ी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
2: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
2: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
2: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
2: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएम श्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
2: पीएम श्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन

0: है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं करके सीखो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं, और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, मैनीट है, और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं। तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार। बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोज़र के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं। ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया, जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं, और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड, और जो वेस्ट मेटल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
2: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
4: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले गिर जाएगा।
5: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का।

0: और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएमसी के पहले का टाइम था और जो पीएमसी के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएमसी के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएमसी देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएमसी स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएमसी योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएमसी योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। अभी आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जुड़े हुए थे, कार्यक्रम डगर विकास के अभी आपने सुना। और आकाशवाणी छिंदवाड़ा FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपके फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद को। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत होटल फिल्म से आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज़ों में। इंदौर की रचना है, उषा खन्ना का संगीत है और ये गीत है हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। ग्राम प्रधानी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्या बघेल और इनका पूरा परिवार। प्रियम वामिका और वाणी अपनी पसंद का गीत सुनाता है। मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरा और नरगिस खातून ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। नसीब अब्दुल हक्कर, जिया मोहम्मद, उमर, राजेंद्र कटरे आप सभी हैं। संजय कॉलोनी खंडवा से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री ने भी अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। घूंघट रेडियो संघ जिला धमतरी से बेबी शाहिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा, बेबी आयशा खत्री आप सभी ने अपनी फरमाइश भेजी है। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको मनहर उदास और आशा भोसले की आवाज में होटल फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी छिंदवाड़ा से फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे हैं। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश लेते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की। आप सभी हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, आप सभी ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। पश्चिम सिंहपुर चाईबासा।

झारखंड से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और आप सभी हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से। राजस्थान है रमेश चंद्र चौहान, चौहान प्रतीक चौहान और आपके सभी साथी धर्मेंद्र विश्वकर्मा, तारिणी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा के साथ आशीष विश्वकर्मा, आप सभी ने फरमाइश भेजी है मध्य प्रदेश से। और आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कयामत से कयामत तक, इस फिल्म से कुमार बानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का। सुनिए आपकी पसंद पर।

तो श्रोताओं, ये था आज आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गीत। अगर आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पसंद भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602-262-263। तो अब दीजिए कार्यक्रम से चलने की अनुमति अपने दोस्त अमित सोनी को। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:45 बस होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी।
1: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ

0: राउंडटेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक

एक मैथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में

उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर

0: कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता V.D. सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवा से, आवाज़ें मीका सिंह, विशाल मिश्रा और ज्योतिका टंगरी की थी। गीत के बोल राजेश शेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: कैलिस्कोप।
1: तुम्हें याद कर दिल कर
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई यहाँ।

0: बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पर हो।
1: ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उधास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उधास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उदास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उदास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड।

2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बा नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

अच्छा ये गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

यूं भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता, दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।

साथ के पल बीत जाते हैं जल्दी। कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे, तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होता है हमारा आज का प्रसारण। कल सुबह 5:55 पर हम अपने प्रातःकालीन प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के साथ एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे।